हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्व क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

परमात्मा हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, अर्थात ईश्वर की न तो शुरुआत होती है और न ही अंत होता है, इसलिए ईश्वर को अनादि और अनंत कहते हैं।

जो देर से मिलता है वह दूर तक चलता है, इसलिए सब्र और भरोसा दोनों रखिए ईश्वर पर। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत आंचल को। नमस्कार।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब नजर डालते हैं हमारे आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा की, तो सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती में आज आप सुन सकेंगे 6:50 पर। सदाबहार नगमों का समय रहेगा सवेरे 7:00 और 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सवेरे 8:00 और 8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 का समय रहेगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का, जिसे आप सुन सकेंगे हमारे दोनों ही चैनल आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक सिटी पर एक साथ।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सवेरे 10 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सवेरे 11 बजे। 11:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप फिर से सुनेंगे दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से।

ग्रामीण महिलाएं सुनेगी उनका अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, साथ ही विकास चर्चा में आप सुनेंगे डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास। दोपहर 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचार का, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृषि जगत किसान भाई सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर, और हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दोपहर 3 हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारी प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रम।

हमारी संध्याकालीन सभा का आगाज होगा शाम 4:58 पर और 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

शाम 6:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय होगा 6:40। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये तीनों ही प्रोग्राम आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। कार्यक्रम खेती और घर आप सुनेंगे शाम को 7:00। रात्रि 8:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का। समाचार संध्या आप सुन सकेंगे 8:45 पर। 9:00 आप सुनेंगे News@9। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत मनचाहे गीत। रात्रि 11:00 का समय रहेगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती में आज।
1: खेती में आज हुनो वाला हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाई रो राम राम सा देखो किसान भाई बहनों मई मीरो मीनो चल रो है और अणी टाइम पे आपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है अंडी बारे में बात करा। और देखो सबों पहली फसल उत्पादन री बात करा तो देखो कपास री अमेरिकन किस्मा में 75 किलोग्राम नत्रजन और 35 किलो फास्फेट देशी किस्म रो 50 किलोग्राम नत्रजन और 25 किलोग्राम फास्फेट और संकर किस्मा में 120 किलो नत्रजन और 40-50 किलो फास्फेट प्रति हेक्टर अणी टाइम पे आपने किसान भाई देवे। पोटाश उर्वरक मिट्टी री परीक्षण रे आधार पर इस देनो है। फास्फेट और पोटाश री पूरी मात्रा और नत्रजन री आधी मात्रा बुआई रे समय बीज रे नीचे उड़नी है। नत्रजन री शेष आधी मात्रा क्रमशः 2 भागा में कलियां और डोडा वंटता टाइम में देना है। जनी मिट्टी में सल्फर पोटाश या जिंक क्रांतिक स्तर नीचे बेवे तो अणा उर्वरकारो समायोजन करवाऊ आर्थिक लाभ जो है वो बढ़ जावे सा। 2% म्यूरेट ऑफ पोटाश रो छिड़काव डोडा वनवारे प्रारंभ में और अधिकतम डोडा वनता टाइम पे अपने कपास री उपज और रेशा री गुणवत्ता बढ़ावा में लाभकारी वेवेसा। जायद मूंग री फलिया में अणी टाइम पे दाणा वनवारे समय सिंचाई करनी है। फलिया चटकवा अग्रे पहली अपने तुड़ाई भी कर लेनी है सा। अब आप ही बागवानी री बात करा तो देखो पपीता री नर्सरी तैयार करवारे वास्ते किस्मा री बात करा तो हनी ड्यू कुर्ग हनी ड्यू पूसा डिलिशियस पूसा नन्हा अर्का सूर्या और CO2 मो आपी कणी भी किस्म रो चयन कर सका सा। पपीता रे पोत तैयार करवा रे बाद जुताई करवा रे बाद खाद डालिन खेत में ऊंची ऊंची क्यारियां तैयार करनी है। बीजारी 2 सेंटीमीटर री दूरी पर 10 सेंटीमीटर री कतारों में लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर री गहराई पर आपने बुआई करनी है सा। आम में सूक्ष्म पोषक तत्वों में जस्ता री पूर्ति रे बाद जिंक सल्फेट 0.3% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रो छिड़काव आपने करनो है सा और 10-15 दिन रे अंतराल पर सिंचाई भी आपने करनी है। फलदार पौधा रे जटे बात कर रहा तो वना में सूक्ष्म पोषक तत्वारी पूर्ति रे वाते सूक्ष्म तत्व मिश्रण री 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी री दरू अपने घोल वणी छिड़काव करनो पड़ेगा सा। आम में फलोद्यान रे वाते खेत री तैयारी अणिमा में आपने शुरू कर देनी है। सबों पहली 2 जुताई

मिट्टी पलटवा वाला हालू करीन खेत में खरपतवार अपने निकालनी है। खेत ने जटा तक संभव है समतल अपने करनो है। फलदार पौधा और वनरी किस्मा रे अनुसार खेत में गड्ढा रे वाते निश्चित दूरी पर अपने रेखांकन करनो है और उचित आकार रा गड्ढा खोदिन 15-20 दिन तक अपने खुला छोड़ देना है। सामान्यतः आम 8-10 मीटर, आंवला 6-8 मीटर, अमरूद 6-7 मीटर, बेर जो है 6-8 मीटर, नींबू 5 मीटर, लसोड़ा 8 मीटर, अंडे अलावा पपीता 2 मीटर और करौंदा रे वाते 3 मीटर ही दूरी रा गड्ढा रा रेखांकन अपने करना पड़ेगा सा।

दंड अंतराल पर अपने सिंचाई करनो है, अनिवार्य रूप भी ध्यान रखनो है। फलदार पौधा लगाओ पहली निश्चित दूरी पर चिन्हित करीन गड्ढा गोदीन पौधा रो रोपण करनो अपने जरूरी है। मई जून में गड्ढा गोदीन वणा ने खुल्लो छोड़नो है। गड्ढा खोदता समय अपने ऊपरी आधी उपजाऊ मिट्टी एक तरफ रखी देनी है और नीचे री शेष मिट्टी खेत में फैलाई देनी है। प्रति गड्ढा रे हिसाब अपने 15-20 किलोग्राम गोबर री खाद मिलाई देनी है। पौधा लगाओ पहली 100 ग्राम क्यूनोलोफॉस 1.5% चून प्रति गड्ढा रे हिसाब अपने मिलावनो है। अबे किसान भाई बहनों, अभी मिर्चा री बात करा तो देखो मर्च री खेती रे बात है, हाऊ किस्मा री बात करा तो पूसा ज्वाला RCH1 मथानिया लौंग पंत C1 और 2 G5 पूसा सदाबहार CH1 और 3 अणामू अपिकष्टी भी एक फसल रो चयन कर सका सा। एक हेक्टर क्षेत्र में बुआई रे वाते 1.5 किलोग्राम बीज री आवश्यकता अपने पड़ेगा। बीजा ने बुआई पहली 2 ग्राम कैप्टन 50% WP प्रति किलो बीज री दर अपने उपचारित जरूर करनो है। नर्सरी में कार्बोफ्यूरोन 3G कण 8-10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर री दर भूमि में मिलावना है सा। अब आप रींगणा और टमाटर री बात करा तो रींगणा और टमाटर री फसल में झुलसा रोग रे नियंत्रण रे वास्ते मैंकोजेब 75% WP 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाइन अपने छिड़काव करनो है। फल और तना छेदक कीट रे नियंत्रण रे वास्ते एसीफेट 75% दवा 1.5-2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनेन अपने छिड़काव करनो है सा। दवा छिड़कवारे और फल तोड़वा में अपने 8-10 दिन रो अंतर राखनो है, अनिवार्य रूप भी ध्यान राखनो पड़ेगा सा। फूल गोभी री जटे आपी बात करा तो फूल गोभी री अगेती किस्मा जैसे कि अर्ली पटना या अर्ली कुंवारी री नर्सरी री बुआई आपी कर सका। एक हेक्टर क्षेत्रफल में 600-750 ग्राम बीज पर्याप्त अपने रहेगा। अब आपी कांदा री बात करा N53 पूसा रेड अर्का कल्याण बढ़िया रहेगा सा। एक हेक्टर क्षेत्र में बुआई री बात करा तो अंडे वाते 10 किलोग्राम बीज री मात्रा अपने पर्याप्त रहेगा सा। पुष्पा रे उत्पादन री बात करा तो देखो हजारा है, गेंदा री बुआई रे वाते उन्नत किस्मा री बात करा तो क्राउन ऑफ गोल्ड पीला वाते, जॉइंट सनसेट नारंगी, येलो स्टोन और गोल्डन एज अर्का गेंदा वाते और रेड बोकलेट रेड चेरी बढ़िया रहेगा सा। अंडे अलावा देखो आप ही गुलाब मोगरा री बात करा तो देखो गुलाब मोगरा और दूसरा फूला वाला पौधा में 2-3 दिन रे अंतराल में अपने सिंचाई करती रहनी है। मोगरा रे फूल खिलवा लागे और विक्रय वाते बाजार में वनी टाइम पे अपने भेज दी देना है सा। वर्षाकालीन फूला में बीजारी व्यवस्था करीन अपने एनी टाइम पे नर्सरी भी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर देनी है सा। अब आप ही पशु पालन री बात करा तो देखो पशुआ ने लू बचावा रे वाते एनी टाइम पे अपने उपाय करना पड़ेगा। पशुआ ने देखो पानी में ग्लूकोज या नमक और शक्कर रो घोल मिलाइन भी आप एनी टाइम पे पिलाई सका। लू लागवा पर पशु ने ठंडे स्थान पर अपने बांधनो है, माथा पे बर्फ या ठंडा पानी री पट्टियां भी आप ही राखी सका और पशु चिकित्सक को संपर्क जरूर करनो है और वणी उपचार भी करावनो है सा। पशुआ में गलगोटू रोग रे बचाव रो टीको भी एनी टाइम पे लगानो पड़ेगा। दुधारू पशुआ ने थनेला रोग बचाव रे वास्ते भी एनी टाइम पे अपने उपाय करना पड़ेगा। किसान भाई बहनों देखो मई और जून महीना रे बीच में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़े और मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म रहे और गर्म हवा रे चालवार भी शुरू भी जावे और थोड़ी असावधानी आप ही बरता तो मौसम रे कारण देखो अपना पशुधन है और वंडे उत्पादन में बहुत ही कमी भी जावे और अणी वंचवा वास्ते देखो अपने पशुआ ने जो है पर्याप्त रूपों अपने ठंडी स्थान पे बांधना है। पक्का निर्मित पशु आवास री छत पर अपने सूखी घास या कड़बी भी आप ही राखी सका, जणियों कही है कि छत जो है गर्म नहीं वेगा। पशु आवास रे अभाव में पशुआ ने घनी छाया वाला पेड़ा रे नीचे बांधना चावा। पशु आवास में गर्म हवाओं रो सीधो प्रभाव नहीं वे, अंडे वाते लकड़ी रा जी फंटा है या बोरी रा टाट रा लगाई ना पी अणा हवाओं वणा ने रोकी सका। आवश्यकता पड़वा पर बोरी रे टाट ने पपी पानी गीलो भी कर सका, जणियों कही है कि पशु आवास में ठंडक बनी रहेगा। अंडे अलावा देखो कूलर है पंखा है अंडो इस्तेमाल भी आपी कर सका सा। पशु आवास रे आसपास रे क्षेत्र में पेड़ा रोगणो लू ने रोकथाम में बहुत ही ज्यादा सहायक व्यवसा। पशु रे आवास वाते पर्याप्त उपलब्ध जगह भी वेणी चावे, आवश्यकताओं ज्यादा पशुआ ने आवास गृह में अपने नहीं बांधना चावा और रात में पशुआ ने खुला स्थान पर बांधना चावा। समुचित पशु आहार री व्यवस्था भी अपने करनी पड़ेगा। अणी मौसम में पशुआ ने भूख कम लागे और प्यास ज्यादा लागे तो अंडे वाते पशुपालका ने पानी पिलावरी व्यवस्था रो भी पूर्ण रूप ध्यान राखनो है। पशुआ ने दिन में 3-4 दान पानी जरूर पिलानो है सा और ग्रीष्म काल में पशुआ ने स्वच्छ पानी री आवश्यकता अनुसार पिलावा, जणू कही के पशु शरीर में तापमान जो है नियंत्रित राखवा में मदद मिले।
अंडे अलावा पशु ने प्रतिदिन ठंडा पानी अपी नहलाई भी सका सा। यो तो देखो अपी बात की दी कि देखो महीरो मिनो चाल रो है, अनि टेम पे आपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है सा। अबे घड़ी आड़ी

0: देखा तो माने चालवारो टाइम वीरो है, तो नंदू भाई ने आज्ञा दोसा राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। समय हुआ है सदाबहार नगमों का। सबसे पहले सदाबहार नगमों में आप सुनेंगे फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

कुमार के युगल स्वर में ये खूबसूरत सा गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म ब्रह्मचारी से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

0: आकाशवाणी एट 90। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के युगल स्वर में आप सुन रहे थे खुदगर्ज फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म कलाकार से, आवाज किशोर कुमार की।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। सुगम संगीत की आखिरी प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20

0: 20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइफ

0: सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
5: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
3: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
6: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
3: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक

0: रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC.

0: चल पड़े हैं राहों में, कांटे भी होंगे साथी, मुसीबतें हो चाहे भारी, जीत हमारी बाती, हौसलों को रख उजाला, डर को बना अंधेरा, जब तक सांस चले बदन में, चलते रहो हर सवेरा।
1: और इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित, और हम शुरुआत करते हैं आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम की। और मेरे साथ हैं
0: आंचल।
1: तो आज हम क्या खास लेकर आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। आज कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे प्रोग्राम है, और सबसे पहले हम दैनिक खबरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि प्लांट हेल्थ डे के बारे में। और क्योंकि क्रिकेट का बुखार पूरे देश पर चढ़ा है तो आईपीएल अपडेट भी होगी हमारे साथ।
0: बिल्कुल। और सोशल पल्स में हम बात करेंगे डिजिटल युग में बढ़ती इन्फ्लुएंसर संस्कृति की, और जानकारी में हम देंगे घर पर किए जाने वाले आसान व्यायाम की।
1: बिल्कुल। और साथ में मौसम और स्वास्थ्य सेगमेंट में हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी से बचाव और पानी पीने की आदत के बारे में।
0: ठीक है, तो उससे पहले लेते हैं ये गीत।

0: तो समाचारों की अगर बात करें, जो कि हमारे यहाँ की दैनिक खबरों की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले एक बहुत ही राहत की खबर हमें दिखाई दे रही है। वो है कि अहमदाबाद रूट से जो एंट्री पॉइंट है, यानी कि जो बलीचा बाईपास का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर बहुत जाम जो हमेशा रहता है, उससे निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एंट्री पॉइंट बनाने का शुरुआत कर दी है। और कोशिश है कि बहुत जल्दी हमें एक सुरक्षित चौराहा वहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और उस जगह की अगर हम बात करें, तो हमें पता नहीं चलता कि कब हमें उदयपुर के अंदर प्रवेश लेना है, वो एकदम से स्किप हो जाता है कई बार। और इसी चीज़ से बचने के लिए वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अब साइन बोर्ड्स वगैरह लगवाए गए हैं, और भी ज़्यादा उसको सुरक्षित बनाने की काम कर रहे हैं हमारे अधिकारीगण।
1: स्थानीय खबरों में एक खुशखबरी हमारे लिए यह है कि शहर में दूधतलाई और नीमच माता के बाद अब गोगुंदा की वादियों में जिले का तीसरा रोपवे आकार लेने जा रहा है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित धोलियाजी बाऊजी को एक नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। धोलियाजी बाऊजी की पहाड़ी समुद्र तल से 1200 मीटर ऊँची है। गोगुंदा क्षेत्र भी ऊँचाई पर स्थित है। ऐसे में रोपवे से अरावली की चोटियों का वह नज़ारा दिखेगा जो अब तक केवल पैदल ट्रैकिंग करने वालों को ही मिलता था।
0: बिल्कुल। और आजल इसी के साथ एक और खबर जो है, वो है हमारे स्टूडेंट्स वर्ग के साथियों के लिए। मीरा गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कौशल आधारित 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम BFSI के नए सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो जो भी छात्राएं इस कोर्स में अपना एडमिशन करना चाहती हैं, वो इनकी वेबसाइट पर जाकर वहां पर इसकी प्रवेश प्रक्रिया देख सकती है, सिलेबस चेक कर सकती है, और इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा प्रवेश लेना।
1: बिल्कुल। एक मुख्य खबर ये भी है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चल रहे तकनीकी कार्य का असर अब उदयपुर की रेल सेवाओं पर पड़ने लगा है। बिलासपुर चांपा स्टेशनों के मध्य तीसरी और चौथी लाइन बिछने और ऑटो सिग्नलिंग के कार्य के कारण रेलवे ने उदयपुर से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया, जिसमें 13 जून को उदयपुर से प्रस्थान करने वाली शालीमार ट्रेन रद्द रहेगी और 14 तारीख को भी शालीमार से प्रस्थान करने पर यह ट्रेन रद्द रहेगी। उदयपुर के अलावा राजस्थान से गुजरने वाली पूरी जोधपुर 10 तारीख को और जोधपुर से पूरी 13 जून को ये रेल सेवाएँ भी कार्य के चलते बंद रहेगी।

0: तो अभी जो IPL चल रहे हैं उसके 55वें मैच में दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराया। 211 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर जो दिया था उसे 19 ओवर में ही चेज कर लिया। माधव उन्हें 18 रन पर नाबाद रहने और 2 विकेट लेकर 40 रन देने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच रखा गया। और सबसे खास बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की 5वीं जीत दर्ज करके अपने प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वहीं पर पंजाब किंग्स को हाई स्कोर के मुकाबले में 3 विकेट से हराया। पंजाब की ये छठी जीत और लगातार 4थी हार रही। मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली के सामने 211 रन का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन दिल्ली ने लीग इतिहास में अपने दूसरा सबसे बड़ा रन चेस करते हुए 19 ओवर में ही ये मुकाबला जीत लिया। और धर्मशाला के मैदान पर 200 रन से ज़्यादा के स्कोर को चेस करने वाली पहली टीम भी बन गई है।
1: बिल्कुल। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। तो IPL 19 का 56वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीतने वाली टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुँच जाएगी और टॉप 2 की रेस में स्थिति मजबूत कर लेगी। तो दोनों के बीच IPL

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम बैंड दोनों ही चैनल पर एक साथ।
1: बिल्कुल अमित, और बात करते हैं आज के दिवस की। पौधे है धरती की शान, इनसे ही है जीवन की पहचान। हरी भरी ये दुनिया बनाते, सबको शुद्ध हवा दे जाते। आओ मिलकर इन्हें बचाएं, धरती को फिर से हरा बनाएं। अमित, आज है 12 मई और प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पौधों की सुरक्षा करना, जो हमारे भोजन का 80% और हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन का 98% हिस्सा है।
0: बिल्कुल, और अगर भोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी हम बात करें

0: हैं, तो हमारे जो पौधे हैं वो हमारे शरीर को औषधि के रूप में भी काम करते हैं। और इन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसे कीट पतंगे को बचाए रखते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पौधे बीज बना पाते हैं और बीज बना के नए पौधे तक उस अपने डीएनए को पहुंचा पाते हैं।
1: पौधों की सुरक्षा के लिए हमें उनकी रेगुलर केयर करनी है। हम में से कई लोग ऐसे जो पेड़ पौधे तो लगाते लेकिन फिर उन पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले हमें उन्हें नियमित पानी पिलाना है, कीटनाशकों का सही उपयोग करना है, उसकी साफ सफाई रखनी है और स्थानीय पौधों को हमें बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए दुनिया भर के जो किसान हैं, वैज्ञानिक हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो पौधों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि पौधे बहुत नाजुक होते हैं। अगर उनकी सही समय पर उनकी देखभाल की जाए तो वो बड़ा वृक्ष बनकर हमें ही संरक्षण और छाया देंगे।
1: बिल्कुल। इस वर्ष इस दिवस की थीम की बात करें तो प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा।
0: और पौधे सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो प्लांटेशन करना या अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, और हमारे तनाव को भी कम करता है।
0: जी
1: अंत में हम यही कहेंगे, स्वस्थ पौधे स्वस्थ जीवन। पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी धरती और जीवन सुरक्षित रहेगा।

तो आंचल, अगर हम बात करें कि अभी का समय जो कि हमारे हाथ में एक फ़ोन है और फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया हमें नज़र आ जाती है, ये दौर चल रहा है। और क्योंकि डिजिटल दुनिया है, तो डिजिटल दुनिया में बात करने के तरीके भी बदल गए हैं।

0: अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के तरीके बदल गए हैं, और इन बदलते तरीके में एक जो संस्कृति हमारे जीवन में आ गई है वो है इन्फ्लुएंसर संस्कृति।
1: बिल्कुल, आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया, अब लोग फैशन, खान पीन, यात्रा, शिक्षा और यहाँ तक कि जीवन से जुड़े फैसलों के लिए भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की राय के महत्व देने लगे हैं।
0: बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो अपने वीडियो, फोटो और विचारों के जरिए लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। आज के समय में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अपनी प्रतिभा भी दिखा सकते हैं, और प्रतिभा दिखाने के साथ साथ नई जानकारियां और कुछ कंपनीज के विज्ञापन भी अच्छे से कर रहे हैं।
1: कई युवा आज कंटेंट क्रिएशन को करियर के रूप में अपना रहे, यह एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर बात वास्तविक हो यह ज़रूरी नहीं, कभी कभी लोग दिखावे, तुलना और लाइक्स की दौड़ में मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही, और क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इनसे दी हुई जानकारी के आधार पर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है या हानिकारक है, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल अमित, और इस संस्कृति के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इससे लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, वो अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रख सकते हैं,
0: जी
1: छोटे व्यवसायों को प्रचार प्रसार का सस्ता और प्रभावी माध्यम मिल गया है, साथ ही यह ज्ञान और जानकारी के तेज प्रसार में भी सहायक है।
0: बिल्कुल,

0: काया के लिए घर पर किए जाने वाले आसान व्यायाम की, जिन्हें हम बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं और 15 से 30 मिनट करके फिट रह सकते हैं।
1: बिल्कुल, अगर भागती दौड़ती ज़िंदगी है हम लोगों की अभी, और इस ज़िंदगी में समय निकाल पाना कि हम जिम जाएं या फिर हम वॉक करने के लिए किसी गार्डन में या फतेह सागर पर सैर करने जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ों से हम अपने घर पे ही, जैसे अगर अपने घर पे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो हम कोशिश करें, या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही घर पे हम लोग बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और जिससे शरीर में थोड़ा सा लचीलापन आएगा और थकान कम होगी। और इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो मुझे लगती है पर्सनल रूप से, वो है सूर्य नमस्कार, क्योंकि उसमें 12 से 13 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को करेंगे तो आपके शरीर की एक एक मसल्स, एक एक हड्डी का जोड़ उसमें यूज़ होता है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।
0: साथ ही जंपिंग जैक, इस व्यायाम से हमें सीधे खड़ा रहना और जंप करते हुए हाथ ऊपर की ओर और पैरों को फैलाना है। 15 से 20 बार से इसकी शुरुआत करें। ये पूरे शरीर का वार्म अप करने के लिए बेहतरीन व्यायाम है। ये एक्सरसाइज दिल की धड़कन बढ़ाता है और कैलोरी को बर्न करता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में हमें कुछ एक्सरसाइजेज जो कि हमारे तनाव को, हमारी मानसिक शांति के लिए भी ज़रूरी है, ऐसी भी करनी चाहिए। तो हम उसके लिए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ पजल्स वाले गेम खेल सकते हैं जिससे कि दिमाग एक्टिव हो। अखबार में डेली कुछ ना कुछ ऐसे पजल्स आती हैं हमारे पास, जो मैथमेटिकल पजल्स होती हैं या जो वर्ड को लेकर पजल्स होती हैं, तो हम इनको खेल कर भी अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
0: साथ ही हम पुशअप्स, स्क्वैट और एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ना, कम से कम 1 से 2 मिनट तक अगर हम ये भी करते हैं, तो ये एक सरल व्यायाम का हिस्सा है जो हमें फिट रखने में मदद करता है। साथ ही प्लैंक और माउंटेन क्लाइंबर, जो वजन घटाने और फिटनेस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इसे तेज गति में 15 से 20 बार हमें करना है।
1: बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि किसी भी इंसान को देखकर कसरत नहीं करनी है। जितना आपका शरीर साथ दे, जितना आपके हिम्मत है, आप उतना ही करें। और अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे कि पीठ दर्द है या घुटनों का दर्द है, तो इस जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह के साथ ही आप घर पे व्यायाम को अपनाएं, नहीं तो आपको महंगा पड़ सकता है।
0: और साथ ही व्यायाम स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप जरूर करें और पर्याप्त पानी जरूर पिए,
1: क्योंकि छोटे छोटे स्वास्थ्य के ये जो कदम हैं, ये हमारे शरीर को एक्टिव भी रखेंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आगे जारी रहेगा। फिलहाल सुनेंगे हम हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से कुछ ही देर में,
1: तो बने रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय

0: बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
3: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच

0: गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लॉन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरूआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
1: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमधरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33,72,00,000 रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनके सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। श्री खेवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। इस गीत के साथ

0: चले जैसे हवाएं सनन सनन। अमित, अब बात करते हैं मौसम और स्वास्थ्य की। तो लेक सिटी में गर्मी अब तीखे तेवर दिखाने लगी है। पिछले 48 घंटों में तापमान के ग्राफ ने जिस तेजी से छलांग लगाई उससे पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। आने वाले दो दिन तक तेज लू यानी हीट वेव की प्रबल संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे में 0.7 डिग्री उछलकर 42.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है।
1: बिल्कुल, और अगर हीट वेव की बात करें तो कल महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में लगभग 45 मरीज वहां पहुंचे हैं लू से अपना उपचार करवाने के लिए। और तापमान की बात करें तो 42.3 डिग्री अधिकतम तापमान और 25.9 न्यूनतम रहने की उम्मीद है। साथ ही ह्यूमिडिटी की बात करें तो 30% रहेगी और जो हवा की गति है वो 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो इस लू के अंदर, इस गर्मी के अंदर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खुद को बचकर रहना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और इसके लिए कुछ उपाय जो हैं उसमें है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहने, ज़्यादा कसे हुए कपड़े ना पहने, जितना हो सके छायादार स्पेस पर काम करें। अगर धूप में काम करना आपकी मजबूरी है तो कुछ कुछ समय में आप छाया में आते रहें और पानी लगातार पीते रहें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, और प्राकृतिक पेय में आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फल का जूस ले सकते हैं, जो शरीर को ठंडक देते हैं और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करते हैं। पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा जैसे फलों का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में जो हमारे प्राकृतिक और जो घरेलू उपचार के चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दें। तो केरी पानी भी एक अच्छा विकल्प है, जो अच्छे टेस्ट के साथ में आपके शरीर के अंदर नमक, शक्कर और पानी की कमी को पूरा करता है। और इसी के साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी

0: धूप में निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें। वैसे तो कोशिश करें कि दोपहर 12 से शाम 4 साढ़े 4 बजे तक आप बाहर ना निकलें, अगर आप टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो। और अगर फोर व्हीलर पर भी चल रहे हैं तो आजकल धूप में पड़ी हुई गाड़ियां बहुत अंदर से भट्टी जैसी गर्म हो जाती है, तो उस वक्त भी आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
1: और ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, तो इनका उपयोग हो सके तो कम करें, और साथ ही तले भुने खाने से भी हमें इस मौसम में बचना है।

0: अमित, कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे मौसम से बचाव की, तो गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं और अभी तो नौ तपा बाकी है, तो इस मौसम में जो बचाव है वो है पानी ज़्यादा धूप कम, यही है गर्मी से बचने का सही कदम।
1: बिल्कुल, और एक तरीका है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है ये जांचने का, उसका बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आपके होंठ सूखने लगे या होठों पर पपड़ी आने लगे, दैट मीन्स आप पानी समय समय पर नहीं पी रहे हैं और सूरज जो है वो आपका पानी को ड्रेन करता जा रहा है, तो आपका सही समय पर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ ऐसी बॉटल्स भी आ गई हैं जिस पर लिखा होता है कि हर 15 मिनट में आपको इतना पानी तो पीना ही है, तो अगर आप पानी पीना याद नहीं रख पाते हैं तो आप उस बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हर 30 मिनट, 15 मिनट या 40 मिनट में आपको याद दिलाता रहे कि आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल, और सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीना आपकी आदत में होना चाहिए। खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 30 से 45 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। व्यायाम के बाद भी पानी ज़रूर पीना है और सोने से पहले थोड़ा पानी आपको ज़रूर पीना है।
1: बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि वैसे तो धूप में ना जाएं, पर अगर आपकी मजबूरी है, कुछ काम ऐसा आ गया है कि आपको धूप में जाना है, तो अपने साथ में पानी की बोतल ले जाना ना भूलें, क्योंकि हर जगह पर पानी उपलब्ध हो ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपना पानी अपने बैग में अपने हाथ में होगा तो हम चलते फिरते भी उसे पी सकते हैं, और थोड़ा सा इस गर्मी से बचने के ये संसाधन हम अपनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा।
0: बिल्कुल, और क्या नहीं करना है, तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना और प्यास लगने का इंतज़ार हमें नहीं करना है, और बहुत ठंडे पानी पीने से भी हमें बचना है। ठीक है, तो एक छोटा सा मंत्र, हर घंटे 1 गिलास पानी, इससे आप बिना सोचे समझे सही मात्रा में पानी पी पाएंगे।

इसी के साथ अब घड़ी की ओर देखे श्रोताओं, तो वक्त हो चला है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से इजाजत लेने का। कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आंचल, और मेरे साथ थे अमित। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित

0: करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
1: इन्हें हमारा सलाम।
0: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
2: साथियों नमस्कार।
0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
2: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
2: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
2: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14

0: गार्ड्स का गठन हुआ, तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश

0: के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 10:01 हुए हैं। ये समय हुआ है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने चुना।

राहत फतेह अली खान, असीस कौर, तनिष्क बागची की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सिम्बा फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा। अगला गीत हमने चुना है फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से। आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

फिल्म तेरे नाल लव हो गया से आप सुन रहे थे अभी आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को। फिल्म संगीत का अगला गीत हमने चुना है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, आवाज़ है आतिफ असलम की।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें हैं शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की।

यार यार टू से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। अगला गीत हमने चुना है काबिल फिल्म से पलक मुच्छल और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में।

अरमान मलिक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे शेफ फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत का आखिरी गीत अजहर फिल्म से अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा के युगल स्वर में। इसी के साथ दीजिए इजाज़त कार्यक्रम फिल्म संगीत से। नमस्कार।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसमें सुनते हैं राग मियां की तोड़ी, सरोद पर हैं कलाकार बसंत काबरा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को अभी आपने सुना। सुगम संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

कल चौदहवीं की रात थी ये गज़ल, अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल, जगजीत सिंह, आशा भोसले और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है सड़क।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हीरो।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी जूली। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी हीरा पन्ना। आइए सुनते हैं फिल्म धर्मात्मा का ये अगला गीत मुकेश और कंचन की आवाज़ में।

कंचन और मनहर को अभी आपने सुना फिल्म थी कुर्बानी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा अलका याग्निक और उदित नारायण की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

0: और कयाग ने उदित नारायण के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर यह निर्णय किया। 3 मई को हुई इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका है। एनटीए की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर यह साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित कर

0: करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक ओर पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर चला। बाड़मेर में दिन का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके साथ ही बाड़मेर लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना रहा। जोधपुर, बीकानेर और फलौदी में भी झुलसाने वाली गर्मी रही। उधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। ग्रामीण बहनें आप सुनेंगी कार्यक्रम सहेलियां रिबाड़ी।

0: रास्ते जो देर रात तक काम करे है, जनारी लंबी दूरी तय करनी पड़े। कार्यस्थल पे देखो कई तरह का अत्याचार, अनाचार, मानसिक प्रताड़ना री घटना आज भी देखो बनारे आत्मविश्वास ने प्रभावित कर रही है। हालांकि देखो कानून भी बढ़िया है, लेकिन लोक लाज और करियर खबर बारे डरू कई बेना जो भी शिकायत दर्ज नहीं कराई सके सा।
1: हाँची बात कह रहो भाई साहब। और देखो सांडे लारे लारे आप बात करा कि अपनी बेना जत्री भी काम का जी है, पर आने स्वास्थ्य संबंधी समस्या रो भी नरोहारो सामना करना पड़े सा। देखो सा काम का जी महिला है तो सुबह वेगो उठनो सा, घर रो काम करनो, छुरा छुरी ने राखनो, असारे महीने देखो सा कतरी बार मनारे शारीरिक तनाव वेजावे है, कतरी बार नरी हारी बीमारियाँ वेजा जिससे कि हृदय रोग है, नींद री कमी वेजा, क्योंकि देखो सा हंज रात देरू नींद काढ़नी, सुबह वेगो उठनो, आपने देखो सा घर रा जतरा मना खे वनारे देखो टिप्पण भी बनानो पड़े, छोरा छोरी रे स्कूल जा रहा है तो वनाने तैयार भी करना पड़े, तो असारे महीने देखो सा वनाने थकान भेजे, और थकान अगर आप देखा तो वनारी नींद भी पूरी नहीं वेवे अणु, तो देखो आप देखा कि वनाने हृदय रोग है और नरी हारी, आजकल आप देखा कि नरी हारी बीमारियां है, वनडो सामनो वनाने करना पड़े है सा।
0: सही कह रहा हो सा। और देखो मातृत्व एक महिला रे वास्ते जीवन रो खास पड़ाव है, लेकिन करियर रे लिहाज से देखा तो यो अक्सर एक चुनौती बन जावे। प्रसूति अवकाश रे केड़े देखो काम पे वापस जानो, बच्चारी देखभाल करनो, विने जो सुविधा है वी देनो, और अंडे पाछे देखो कनी कनी दाना सोवे की जो महीने जो हुनर वे बेनारो वो दब जावे, भी पाछी जो है अपने कैरियर ने संभाल नहीं सके, और भी जो है जॉब ये कई भी काम कर रही है भी छोड़ देवे। और कई दान देखो नियोजक भी ऐसी बेना ने काम पे राखवाऊँ कतरावे जो पारिवारिक विस्तार योजना बनाई रही वैसा।
1: हाँ जी बात कह रहे हो वैसा। और देखो सा अणी चुनौतियाँ रो विश्लेषण करवा पे आप देखा कि अणा ने दूर करवा रे वास्ते एक तो सबू पहला जटे बेना काम कर रही है, वणा कार्यस्थल री जो नीतियाँ है वे स्पष्ट वेणी जावे, लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं वेणो जावे, जत्रो सम्मान जत्रो पुरुषा ने मिल रो है वत्रो रो वत्रो अपनी महिला बेना ने भी मिलनो चावे, समान वेतन मिलनो चावे, और लारे लारे सब वो बेड़ी बार अगर आप बात करा तो परिवारों सहयोग री आवश्यकता है, जदि अपनी जत्री कामकाजी बेना है वणा ने ये चुनौतियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सर।
0: और देखो जटे आप चुनौतियाँ री बात कर रहे हो, संतुलन री बात कर रहे हो, तो देखो कार्यक्रम में भी संतुलन मेणो चावे। एक भाई जानकारी करे ना, लारे गीत संगीत भी मेणो चावे।
1: हाँ जी बात कह
0: आपको
1: रहे हो
0: तो
1: भाई।
0: राजस्थानी गीत आड़ी चाला।
1: हाँ सर।

0: तो नीता बैसा देखो बेनारो मनोरंजन करवायो लारे लारे संदेश भी हुणवाया सा। और देखो सा बे जानकारी ने आगे बढ़ावा और बेना ने बतावा कि अबार जो है स्टार्टअप रो दौर चाल रो है सा। और देखो स्टार्टअप रे बारह महीने आपा बेना ने जानकारी करावा।
1: देखो स्टार्टअप जो है यो कोई भी व्यवसाय जो है पूरी तरीकों आपा कर सका बदल सका। आज रा युग में देखो नवाचार और उद्यमिता रो युग है और आने में एक स्टार्टअप रो दौर केवल नया व्यवसाय खोलवारे बारा में ज नहीं बल्कि देखो यो समस्या और रचनात्मक जो समाधान है मनाने भी खोजे समाज में बदलाव लावारी भी एक लहर है सा।
0: हाँ सा। और भाई साहब बतावा कि स्टार्टअप कई है। एक स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी वेवे जो अपने शुरुआती चरण में वेवे है जो कि कणी भी विशेष समस्या रो हल करवारे वास्ते एक नवो विचार तकनीक पे आधारित वेवे। और पारंपरिक व्यवसाय रे विपरीत स्टार्टअप रो जो मुख्य लक्ष्य है वो स्केलेबिलिटी है यानी कि बहुत कम समय में तेजियों बढ़वारी क्षमता यानी कि कम समय में आपा ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सका और ऐसी हो ऐसा विचार स्पष्ट कर सका जो कि जो अपनों काम है जो बेहतर होना वे सके है सा।
1: और अबालू तो देखो डिजिटल क्रांति है सस्ती इंटरनेट दरा और स्मार्टफोन री पहुंच देखो स्टार्टअप ने करोड़ों ग्राहक तक पहुंचावारो मार्ग भी प्रशस्त करे। सरकार भी देखो स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया जैसी जो योजना चली रही है अन्य माध्यमों देखो टैक्स में भी छूट मिले आसान पंजीकरण वही सके फंडिंग की सुविधा भी इनमें दी जावे सा।
0: हाँ जी बात की रहो भैसा। और अटे आज आपा देखा आज समय में तो युवा मानसिकता रे महीने भी काफ़ी बदलाव ही रहे। आज रो युवा जो है नौकरी खोजा वाला रे बजाय नौकरी देवा वालों बनवारी इच्छा रखे है और रिस्क लेवारी क्षमता रे वास्ते नए उद्यमिता ने भी जन्म देवे है यानी कि स्टार्टअप जो है आपा कहवा कि आपा नया नई खोज नए नए विचार ने स्पष्ट करे है सा।
1: और देखो स्टार्टअप कटे आपा देखा कि भाई केवल महानगरा तक सीमित नहीं है अणी में देखो यो शहर रे लारे लारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी घेरो प्रभाव अंडो नजर आई रो है। खेती में देखो तकनीक रो उपयोग करने किसान भाई अबे अपनी फसल रो बेहतर

0: प्रबंधन कर रहा है, ड्रोन रो उपयोग कर रहा है, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और ई नाम जैसा जो प्लेटफॉर्म है, अणाउं बिचौलिया ने खत्म करना है, किसान भारी आय बढ़ावा में भी मदद मिल रही है सा।
1: हाँ सा, और देखो सा, ग्रामीण उद्यमिता की बात करा तो स्वयं सहायता समूह हो गया, किसान उत्पादक संगठन के माध्यमों भी ग्रामीण क्षेत्र में छोटा छोटा स्टार्टअप भी पनप रहा है। जानो कहीं आप देखा कि सिलाई वेगी, कड़े वेगी, हस्तशिल्प वेगिया, खाद्य प्रसंस्करण वेगिया, जना नरे हरा क्षेत्र में देखो सा, स्टार्टअप जो है क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है। जो कि और आप देखा कि अपनी जितने भी ग्रामीण बहना है वे भी यानी स्टार्टअप के माध्यम हूँ अपना व्यवसाय शुरू करी नरी आगे बढ़ रही है सा।
0: तो कहवारो मतलब ये जो कि भाई स्टार्टअप करने खाली नौकरी करांगा नहीं वो करांगा नहीं, अपने में अगर हुनर है, कई कला है तो मन विकसित करने आप जो स्टार्टअप करना है खुद भी काम कर सका लारे दूजा ने रोजगार देवा लायक भी बन सका सा।
1: हाँ
0: और स्टार्टअप रो यो दौर जो है वो आर्थिक सामाजिक विकास रो नयो अध्याय है, नहीं केवल बेरोजगारी री समस्या ने हल कर रहे है बल्कि देश ने आत्मनिर्भर बनावा री दिशा में एक बड़ो कदम भी है सा।
1: हाँ सा, और सही मार्गदर्शन नवाचार और मेहनत रो संगम है। आप देखा कि आवा वाला समय में जो है स्टार्टअप रे दौर हुआ अपने जो भारत देश है नरो हारो विकसित वेगा और भारतीय जो है हर भारतीय उद्यमी वेगा सा। और देखो सा, जानकारी है जानकारी कार्यक्रम में है बहुत सारी है और भी करावांगा, लेकिन वणु पहला बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुणावा सा।
0: हाँ सा।

0: तो पूजा भाई साहब बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनाए और जटे देखो जानकारी री बात कर रहे हैं तो अबे मैं नाने जानकारी करा मा भाई वनोत्पादू आमदनी किस तरह वही सके
1: हाँ
0: सा।
1: सर देखो सर अपने कार्यक्रम ने मैंने आपा उद्योग संबंधी जानकारी भी करावा। हाँ सो तो बेना ने बतावांगा वनोत्पाद वाली जानकारी सा। तो वनोत्पादों अपनी बेना जो है आमदनी कर सके यानी वनों प्राप्त हुए वाली जितनी भी संपदा है ग्रामीणों विशेषकर आदिवासी अर्थव्यवस्था री रीढ़ भी केवा। हाँ और आपा देखा कि आमदनी अपनी बेना जो है आजीक जो है कतरी बार आपा देखा कि खेती बाड़ी री जितनी भी बेना है वे वना पर निर्भर रहे और वे वनोत्पादनों आमदनी जो है नरीहरा तरीकों कर सके है जिससे कि लघु वनोपजों संग्रह कर सके है सा।
0: और देखो वनम देखो लकड़ी रे अलावा मिलवा वाली जो छोटी छोटी चीजा है वना ने लघु वनोपज भी के मा और नियमित आय अने हूँ आपने बेना ने भी मिल सके। तेंदू पत्ता ने हरो सोनो भी कहो जावे बीड़ी बनावर इस्तेमाल वेवा वाला अना पत्ता रे संग्रह सीजन में हाउ कमाई वे सके। मवा रे फूल और फल जने की गुल्ली केवा यो भी उपयोग खाद्य पदार्थ तेल और जो मध्य है वने वनामाम काम आवे। बाजार में डी भारी मांग रहे वे और औषधीय पौधा तो आप सब जाना कोई आंवला बहेड़ा हरड़ अश्वगंधा और गिलोय ऐसा जो पौधा है अड़ा ने इकट्ठे करने आयुर्वेदिक कंपनियां ने जो है वो बेच सका सा।
1: हाँ सा और देखो संडेला रे भैसा गोंद और लाख रो उत्पादन भी अपनी बिना कर सके। पेड़ों निकलवा वालो गोंद पलाश या पचे कुसुम रे पेड़ पे वेवा वाली लाख री खेती जो है आय रो बहुत बड़ो स्रोत है सा। गोंद जो है खाद्य और औद्योगिक उपयोग रे वास्ते बहुत ही कीमती और कीमत नरे हरी कीमत और काफ़ी अच्छो मिले है। लाख रो उपयोग आपा देखा कि चूड़िया बनावा में आभूषण बनावा में पॉलिश करवा में इन्हें काम आवे और अंडी वैज्ञानिक खेती करें किसान भाई और अपनी बेना सालाना लाखों रुपया कमे सके है सा।
0: फल और सूखा मेवा की बात करा तो देखो वना में प्राकृतिक रूपों उगवा वाला जो फल है जैसे कि चिरौंजी जामुन सीताफल और आमली रो संग्रह करने विक्रय कर सके। विशेषकर देखो चिरौंजी रे दाना री कीमत बाजार में बहुत बढ़ती वे वैसा जड़ियों यो उच्च आय रो साधन भी बन सके सा।
1: हाँ सा और देखो सा आपा देखा कि वनोत्पादों अपने बिना नरे हरा देखो घर बैठा पैसा भी कमाई रही है और अंडे लारे लारे सरकार भी सहायता कर रही है सा। सरकारी योजना और बनाने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिल रो है। भारत सरकार ट्राइफेड रे माध्यमों कई वनोत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करे है सा और अंडे महीने बिचौलिया रो शोषण खत्म वे संग्रह करता रही बनारी मेहनत और सही दाम पे बैंक खाता रे महीने बनारे मिले है। और वन धन विकास केंद्र समूह में काम करवा वाला लोगों ने प्रशिक्षण और मार्केटिंग में भी मदद मिले है सा।
0: अंडे लारे इस मूल्य संवर्धन री बात करा तो देखो खाली वनोत्पाद इकट्ठो करने बेचवारे बजाय अगर वनडो प्रसंस्करण करियो जाए तो आमदनी कई गुणा तक आपा बढ़ाई सका। जिसरे कि इमली रो पल्प बनाई सका मवारा लाडू और जेम तैयार कर सका औषधि पौधा रो चूरण और अर्क बनाई सका शहद रो प्रसंस्करण और ब्रांडिंग कर सका अणि तरीकों जो ये काम करांगा तो वनोत्पादों बहुत हाउ आमदनी वे सकेगा
1: हाँ सा
0: सा।
1: और अंडे लारे आपा देखा भैसा तो शहद उत्पादन भी कर सका। जंगल रे महीने प्राकृतिक मूल में मिलवा वालो शहद शुद्ध मान्यो जावे और वन क्षेत्र रे पास में आपा देखा कि मधुमक्खी पालन ने बढ़ावो देन वनोत्पाद रे लारे लारे अतिरिक्त आय भी कर सका सा।
0: तो कह सका कि भाई वनोत्पाद वेवा वाली जो आमदनी है वह नहीं केवल स्थानीय लोगों ने आत्मनिर्भर बनावेगा बल्कि देखो वन संरक्षण रे वास्ते भी प्रेरित करेगा। और अगर वैज्ञानिक तरीकों संग्रह और आधुनिक तरीकों मार्केटिंग करी जाए तो वनोत्पाद जो है ग्रामीण विकास रो सब सशक्त माध्यम बन सके सा।
1: हाँ सा तो भाई सा अबे आपको तो अपने बिना रो मनोरंजन कराई दा सा बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाई दा सा।
0: हुणो सा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो नीता बैसा देखो बढ़िया सो मनोरंजन करवायो, लारे लारे संदेश भी हुणवाया, और अबे अपने बेना ने कार्यक्रम में मैंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी करावा हासा।
2: देखो सा, हाजरी भागम भाग भरी जिंदगी में अनियमित खान पान वेरो बढ़तो प्रदूषण अंडे बच्चे देखो अपनो शरीर अक्सर बीमारियां रो मुख शिकार बन जावे। और कई बीमारियां गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग शुरुआती चरणा में देखो स्पष्ट लक्षण अपन नजर नहीं आवे, और अगर अपन नियमित जाँच कराई लांगा अंडे प्रति जागरूक रहांगा तो आपने स्वास्थ्य रो खबर पड़ जाएगा कि भाई कई बीमारी तो नहीं है आपने, तो डॉक्टर पानी जानो पड़ेगा आपने बीमारी व्यवहार पहली अगर जागरूक हुई जावा नियमित जाँच कराई लेवा तो गंभीर बीमारियों में।

वणाणो बि वताया और देखो असां असी गर्मी रे महीने असी भरी दपेरी रे महीने आपणी बेना देखो काम करे और भाई बढ़िया ठंडो ठंडो पेय पदार्थ मिल जावे तो पचे तो बात ही कही कहनी भाई सा। और देखो सा जानकारियाँ और भी करानी है कार्यक्रम रे महीने है, लेकिन अबे आपा घड़ी रियाड़ी नाणा तो अपने कार्यक्रम रे महीनों चाल वालों टाइम वे गयो, तो चाला सा राम राम सा।

बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम सहेलियाँ रेवाड़ी, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा अलका याग्निक की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है राज।

अलका याग्निक और उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म थी ऐतराज़। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम यंगिस्तान।

अलका याग्निक, उदित नारायण के गाए फिल्म मन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विकास चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास के बारे में।

आज के युग में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास केवल व्यक्तिगत प्रगति के साधन नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। तकनीक के तेजी से बदलते परिदृश्य ने यह अनिवार्य कर दिया है कि व्यक्ति न केवल कंप्यूटर चलाना सीखे, बल्कि डिजिटल संसाधनों का बुद्धिमानी और सुरक्षित रूप से उपयोग करने में भी सक्षम हो। डिजिटल साक्षर का अर्थ केवल इंटरनेट चलाना या सोशल मीडिया का उपयोग करना नहीं, इसका वास्तविक तात्पर्य सूचना को खोजने, मूल्यांकन करने, उसका निर्माण करने और उसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता से है। डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक संसाधनों का लाभ सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उठा सकता है। डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने बैंकिंग को हर हाथ में पहुंचा दिया है। डिजिटल साक्षरता से लोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सीख रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है।

साइबर अपराधों के इस दौर में डिजिटल साक्षरता ही वह कवच है जो लोगों को फिशिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाती है। कौशल विकास का अर्थ है व्यक्ति की क्षमताओं को बाजार की मांग के अनुरूप ढालना। आज डिग्रियों से अधिक महत्व इस बात का है कि आप व्यवहारिक रूप से क्या कर सकते हैं। कोडिंग, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास डिजिटल कौशल है तो वह घर बैठे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार प्रदान किया है। डिजिटल साक्षरता एक बुनियादी नींव है जबकि कौशल विकास उस पर बनी इमारत है। बिना साक्षरता के कौशल अधूरा है और बिना कौशल के साक्षरता अप्रभावी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सशक्त कार्यबल तैयार होता है। उदाहरण के लिए एक किसान अगर डिजिटल साक्षर है तो वह ऐप के जरिए मौसम की जानकारी ले सकता है और यदि वह कौशल विकास से जुड़ता है तो स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का उपयोग कर अपनी उपज बढ़ा सकता है।

भारत जैसे विशाल देश में आज भी डिजिटल डिवाइडर मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गति और बिजली की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इस योजना के तहत करोड़ों ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इस योजना के तहत करोड़ों ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में कोडिंग और तकनीकी कौशल को शामिल किया जा रहा है। बड़ी टेक कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल केंद्रों की स्थापना और में निवेश करना चाहिए। इससे आने वाला भविष्य जो है वो सुरक्षित।

0: होगा। विकास चर्चा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में दोपहर समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मैं कनकलता, मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग

0: 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से

0: एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला

0: मामला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। किसान भाई अब सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम पूजा भैसा, राम राम।
1: राम राम नीता भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला हंगलाई किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा पूजा भैसा कार्यक्रम में आया हाँ, और बेनारे वास्ते जानकारी भी लाया हाँ। तो लारे देखो वना ने कई कई आमदनी रा साधन मिल सके यो भी बतावांगा। और आज देखो आपा किसान रिवाज में बतावा के भाई जी खेती बाड़ी रे काम रे लारे जो है पशुपालन रो काम भी कर रहा है, तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है वो किस तरह कर सका सा।
1: घनी बढ़िया जानकारी लाया हो नीता भैसा। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन केवल दूध रो सफ़ेद दिखनो इस नहीं वेवे, बल्कि यो एक ऐसी प्रक्रिया है जंड महीने दूध हानिकारक जिससे सूक्ष्म जीव वेग्या धूल रसायन और बाहरी अशुद्धियों मुक्त वही सके है सा।
0: और देखो दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन यो सूक्ष्म जीव रे पनक वारे वास्ते सब उपयुक्त माध्यम भी है। अगर दूध निकाल वारे लेने उपभोक्ता तक पहुँचावा तक स्वच्छता रो ध्यान नहीं रखांगा पूजा भैसा, तो यो जल्दी खराब हो सके और बीमारियां रो कारण भी बन सके सा।
1: और भैसा स्वच्छ दूध री पहली शर्त है एक स्वस्थ पशु। अंडे वास्ते पशुआरी नियमित जांच, पशुआरी सफाई और दूध निकाल वाले ठीक पहला आपा देखा तो पशुआरे थनारी सफाई बहुत जरूरी वेवे है सा।
0: जटे देखो पशु रहवे वणी जगह ने भी स्वच्छ रखनो बहुत जरूरी है। गौशाला में पर्याप्त रोशनी और ताजी हवा रो प्रबंधन वेणो चावे। आंगणो जो है वो पक्को वेणो चावे, ढलान वालो वेणो चावे। जनी देखो मवेशी अगर गोबर करे मूत्र करे तो वो आसानी साफ वही सके।
1: और वैसा दूध निकाल वाले 2 घंटा पहली गोबर हटेन फिनाइल या पाचे अन्य कीटाणु नाशक रो उपयोग करी नियमित सफाई करने जावे। और लारे ही आपा देखा कि दूध निकालवा वालो व्यक्ति दूधिया जो है वो स्वच्छ वेणो चावे। और स्वच्छ दूध उत्पादन री जो है या महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो भी दूधियो दूध निकाल रो है आपा देखा तो अपने किसान भाई बहन दूध निकाल रहा है तो वनारे हाथ बिल्कुल साफ वेणा चावे। यूनिक भाई बाहनु आया खेती बाड़ी रो काम की दोन में दूध निकालवा लाग गया, वाणा ने हाथ पहला हाउ हाबू धोईन बढ़िया साफ और दूध निकाल वालो जो बर्तन है वो भी बिल्कुल साफ वेणो चावे ऐसा।
0: पूजा वैसा देखो दूध निकालवा वाला ग्वाला रा नाखून कटिया तका वेणे चावे, वन्य कोई संक्रामक रोग नहीं वेणो चावे। दूध दुवारे पहली जिसरे आप बतायो को भाई साबुन हाथ हाउ तरीकम धोनो है, जो दूध निकाल रो है वो भी साफ गाबा पहने। और देखो दूध निकालती टेम पे कणी भी तरह रो धूम्रपान खांसी छींक ई सब करवो बचेगा, तो देखो संक्रमण बहुत हद तक जो है आपा बचे सकांगा और स्वच्छ उत्पादन कर सकांगा सा।
1: हाँ सा, और दूध निकाल भी विधि रो दूध री स्वच्छता पे बहुत ही प्रभाव पड़े सा। आपा देखा कि दूध अगर जो निकाल रो है दूधिया वणा ने पूर्ण हस्त विधि रो उपयोग करनो चावे, यानी कि थना ने 4 उंगलियां और हथेली रे बीच दबाइन पचे दूध निकालनो चावे सा। अंगूठो दबाइन दूध निकालवाऊ भी वचनो चावे, क्योंकि अणु जो है थना पे कछुआरे गांठ पड़ जावे है सा।
0: तो देखो आपा बतेना कि भाई दूध री स्वच्छता किस तरह रखनो है और किस तरह दूध काढ़नो है, तो जो मवेशी पालन रो काम कर रहा है आगे और भी बता मांगा कि भाई और कई कई सावधानियां रखनी है। बड़ा पहले आपको तो जानकारी ला रहे गीत संगीत आली चालना और बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनावा।
1: हाँ सा।

0: तो नीता भाई सा किसान भाई बहना ने कतरो बढ़िया गीत हुणायो मारी रे मंगेतर और देखो सा मनोरंजन करवायो और अणी गीत रे पहला आपा जानकारी करे रहा कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कड़ी तरीकों करनो चावे सा।
1: तो देखो पूजा भाई साहब आप बताइए कि भाई विधि कई है और किस तरह जो है दूध ने काढ़नो है। अबे बतावा कि भाई दूध कड़ियो वे वन में दूध री पहली जो एक दो धार वे

0: तो पूजा भाई साहब देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आप सुना है और जट जानकारी री बात कर रहे हैं। तो भाई किसान भाई खेती बाड़ी रा काम रे ला रहे मवेशी पालन रो काम करे और जिस रहे आपने स्वस्थ रहवा रे वास्ते संतुलित आहार री जरूरत वे बिस्तरे मवेशिया ने स्वस्थ राखवा रे वास्ते भी संतुलित पशु आहार री जरूरत पड़े। तो ये संतुलित पशु आहार हे कई और किस तरह मवेशिया ने देनो है देखो या जानकारी करावा सा।
1: हाँ भाई साहब देखो सा संतुलित पशु आहार री बात कर रहा तो अंडो अर्थ है कि वो भोजन जन्ने महीने पशुआ रे शरीर की समस्त आवश्यकता जिस तरह की बना री वृद्धि स्वास्थ्य उत्पादन और प्रजनन रे वास्ते सब आवश्यक तत्व वेना चाहे जिस तरह की कार्बोहाइड्रेट वे गयो प्रोटीन है वसा है खनिज लवण है और विटामिन है ये सब सही मात्रा में उपलब्ध वे तो अंडे आपा संतुलित पशु आहार के वहाँ सा।
0: और देखो संतुलित पशु आहार रा खास घटक री बात करा तो आहार में सब आवश्यक तत्व जो कि आप बताया आहार तैयार करवारो मानक अनुपात वेणो चावे कि भाई कतरो कसो आहार लेनो है मवेशियारी श्रेणी मणारी उम्र कई है वे कणी तरेरा है गाभिन तो नहीं है बच्चा है एक वणी अनुसार मवेशियारी श्रेणी तय करनो है और वंडे अनुसार जो है प्रबंधन करनो है सूखो और हरो चारो कतरो मिलावनो है अणारी जो पर्याप्त मात्रा है वह वेणी चावे अणा सब ने मिलाई ने जो है संतुलित आहार तैयार वे और वो मवेशिया ने खवा मांगा तो विकास वृद्धि हाउ

0: सकेगा सा।
1: और बेसा एक आदर्श संतुलित दाना मिश्रण तैयार करने वास्ते प्रति 100 किलोग्राम वास्ते मुख्य स्रोत जो है वे है अनाज जो है 30-40 किलोग्राम, जिस तरह मक्का है, जो है, गेहूं है, बाजरो है, अंडो वेणो चावे, खली 25-35 किलोग्राम, सरसों री वे सके, बिनोला री, मूँगफली री या अलसी री खली आप तैयार कर सका। चोकर चूरी जो है 25-30 किलोग्राम, गेहूं रो चोकर भी बनाई सका, धान री पॉलिश करीन भी चोकर बनाई सका और दाला री चूरी करीन भी आप चोकर बनाई सका। खनिज मिश्रण की बात करा तो 2 किलोग्राम बाजारे मैंने उपलब्ध मिनरल मिक्सचर करीन, नमक 1 किलोग्राम, साधारण नमक आपने डालनो ऐसा। तो ये सब संतुलित दाना मिश्रण तैयार करीन आपने ढांडा चोपड़े वास्ते अगर रखांगा तो यो संतुलित पशु आहार बनारे स्वास्थ्य वास्ते बहुत बढ़िया वेगा सा।
0: बढ़िया बात बताई सा। और देखो पशु री अवस्था रे अनुसार वनारी खुराक भी बदलता रहनो चावे। अणि में देखो मवेशिया ने 3 श्रेणिया में आप बांट सका, जिसरे की निर्वाह आहार जो कि पशु रे शरीर ने स्वस्थ रखवा रे वास्ते चावे, चाहे वो पशु दूध दे रोवे चाहे नी वे रोवे। और अणि निर्वाह आहार रे महीने आवे सूखो चारो और अणि में थोड़ो हरो चारो मिले लेनो, यानी पशु रो जो है निर्वाह वे सके, अंडे वास्ते यो निर्वाह आहार कहलावे सा।
1: हाँ सा। और अंडे लारे सापा देखा कि उत्पादन आहार ही जटे बात करा तो दूध देवा वाला जितना भी पशु है वना ने निर्वाह आहार अतिरिक्त प्रति 2 लेन 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देनो जावे, अतिरिक्त देनो जावे, जणो के एक वणार दूध जो है हाउत रे सा।
0: गर्भावस्था आहार री बात करा तो गाभिन जो मवेशी है वणा ने 6 महीना रे केड़े 1-1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाणो देनो चावे, ताकि बछड़ा रो विकास जो है वो हाउ तरीका वे सके सा।
1: हाँ सा। और दाणा खिलावा रे पर्याप्त नहीं है, चारा रो सही संतुलन भी जरूरी राखनो चावे, हरो चारो राखनो, जंडे महीने विटामिन ए प्रचुर मात्रा में वेवे, बरसीम वेगी, लूडसन वेगियो, ज्वार और जई रो जो चारो है वो उत्तम विकल्प वेवे है सा।
0: सूखा चारा री बात करा तो यो मवेशी रो पेट भरवा रे लारे, पाचन क्रिया जिसरे की जुगाली है वो भी सही रखवा रे वास्ते हाउरे वे, गेहूं रो भूसो या पचे कड़बी रो उपयोग अंडे वास्ते आपा कर सका सा।
1: अनुपात की बात करा पैसा तो आदर्श रूपु आहार महीने 2 हिस्सा रे महीने चारो देनो चावे, हरो चारो और 1 हिस्सो सूको चारो देनो चावे, जणो कहीए कि पशु आरे जो है संतुलन मणे तक रे वेसा।
0: संतुलित आहार देमा कई कई लाभ वे यो भी बतावा कि भाई दुग्ध उत्पादन में वृद्धि वेगा, क्योंकि दूध देवा वाला जी भी मवेशी है वनारी क्षमता बढ़ जाएगा, हव पौष्टिक आहार वनाने मिलेगा तो देखो दूध में वसारी मात्रा में भी सुधार वेगा सा।
1: और वैसा अंडे लारिस देखा कि दूध उत्पादन महीने तो वृद्धि वेगा, लेकिन लारे लारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने पशुआरी वे भी बढ़ेगा। संतुलित भोजन मिलवाओ पशु जो है कम बीमार पड़े, दूध हो देवे, वनारे प्रजनन जो है नियमित प्रजनन वेवे, पशु जो है समय पे गर्मी में आवे और गर्भधारण संभावना भी बढ़े है सा।
0: लारिस देखो संतुलित आहार मिलेगा तो बछड़ा रो विकास भी होवेगा, मवेशी रा जो बच्चा है स्वस्थ और वजनदार पैदा होगा, जणियों का ये आवे वाली जो नस्ला है वे भी होवेगा सा।
1: और लंबी आयु की बात करा तो पशु जो है अधिक वर्ष तक उत्पादन देवा में भी सक्षम रहेगा सा।
0: आहार देता टाइम पे देखो थोड़ी घनी सावधानी भी रखनी चाहे, दाणो चार जो है फफूंद रहित वेणो चावे दाणो और चारो, और पशु आहार में धीरे धीरे आपने बदलाव करनो चावे, एकदम बदलाव नहीं करनो चावे, यूनिक भाई पुराणो जो दाणो दे रहा नयो एकदम बदल देवा, पुराना और नया आहार ने मिलाईने देखो 7-10 दिन में धीरे धीरे अना ने बदलाव करनो चावे, ताकि जो खिलाई रहा वो खिलवाता रहनो है, थोड़ो थोड़ो नयो दाणो देता रहनो है, तो वंडी जो है रस वणियो तो करेगा सा।
1: और बैसा अंडे लारे इस दाना मिश्रण खिलावारे कुछ घंटा पहला भिगोए देना देवा, ताकि जो है दाणो सुपाच वे सके, अपने पशु ने जो है पाचन हाउ तरीकों वे जावे और आहार रो पूरो लाभ तभी मिल सके यदि पशुआरे पेट में कीड़ा नहीं वेवे। हर 3-6 महीना रे महीने 3-6 महीना रे बच्चे कीड़ा री दवाई भी अपने पशुआने देता रहनो चावे सा।
0: तो देखो या तो बात बताई कि भाई मवेशी ने संतुलित आहार किस तरह देनो है, किस तरह बनानो है जति की भी स्वस्थ रह सके, और देखो जटे आहार रो पूरो लाभ मवेशी ने मिलेगा तो लाभ देखो आपने कार्यक्रम में भी करा सा जानकारी दे रहा। गीत संगीत आड़ी चलना और बढ़िया सो राजस्थानी गीत और हुनामा चलता चलता।
1: हाँ सर।

तो नीता बेसा देखो कतरो बढ़िया राजस्थानी गीत सुनायो आपने किसान भाई बहना ने और जानकारी तो और भी करानी है लेकिन अब घड़ी आड़ी नाला तो अब कार्यक्रम ने मैनू चालवारो टाइम वे गयो तो चाला सा राम राम सा।

किसान भाई अभी सुन रहे थे।

कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित

0: में लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम की हल्की रोशनी, थकी हुई दिन भर की दौड़ के बाद जब आसमान अपने रंग बदलने लगता है तो हम लेकर आते हैं आवाज़ों का एक नया कारवां।
1: इसे कहते हैं शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं बल्कि विचारों के शुरू होने का सबसे खूबसूरत पल है। तो आइए इसी सुकून भरे समय से निकलते हैं और अनोखी यात्रा पर।
0: आज की इस शाम हम बात करेंगे उभरते भारत की, जो हर नए सूरज के साथ और मजबूत हो रहा है, दुनिया के उन रहस्यों की जो आज भी हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं,
1: और साथ चलेंगे कुछ दिलचस्प ट्रैवल डायरीज में जहां हर सफर अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है।
0: संगीत की सुरमई दुनिया में आज हम सुनेंगे महान गायिका अरुणा साइराम की कला, जहां हर सुर आत्मा को छू जाता है।
1: और यह भी

0: राज याद रहे कि भारतीय रेडियो की गौरवशाली परंपरा आकाशवाणी 90 वर्षों से देश की आवाज बनकर हमारे साथ चल रही है।
1: खेल की दुनिया की ताज़ा खबरें, मैदान की रोमांचक जीत हार और शेयर मार्केट की हलचल जो हर बदलाव की कहानी कहती है।
0: तो आइए इस शाम को बनाते हैं यादगार, जहां ज्ञान भी है, रहस्य भी है, संगीत भी है और देश की धड़कन भी है। आप सुन रहे हैं युवाणी और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ है
1: गार्गी।

0: सिर्फ कच्चे मसाले एक्सपोर्ट करते थे ना गार्गी।
1: हाँ, पर अब वक्त बदल गया है। अब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं।
0: जैसे कि स्पाइस ऑयल्स और ओलियो रेजिन्स पर।
1: बिल्कुल, इनका उपयोग अब विदेश विदेशी दवाइयों और कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
0: मतलब हमारी लाल मिर्च और हल्दी अब सिर्फ खाने में नहीं है, मतलब ये और ये लैब में भी काम आ रही है।
1: बिल्कुल, और पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट $4 बिलियन को पार कर गया है।
0: 4 बिलियन डॉलर, यह तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है।
1: टारगेट तो और भी बड़ा था, जैसे 2030 तक हमें $10 बिलियन तक पहुंचना है।
0: पर इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए क्वालिटी भी तो होनी चाहिए।
1: वहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है, जैसे क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग्स।
0: मैंने सुना है इसमें मसालों को ठंडा करके पीसा जाता है
1: हाँ, ताकि उनका नेचुरल ऑयल और उनकी असली खुशबू बरकरार रहे।
0: और शुद्धता भी रहे। और शुद्धता के लिए और क्या-क्या चीजें करी जा रही है?
1: उसके लिए अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया गया है।
0: ब्लॉकचेन मसाले में कैसे काम कर रहा है?
1: हर पैकेट को खेत से लेकर किचन तक ट्रेस किया जाता है, पूरी पारदर्शिता के साथ।
0: यह तो सही है, ग्राहक को पता होगा कि उसने जो हल्दी खरीदी है वह किस खेत से आई है।
1: इसी भरोसे की वजह से नए नए स्टार्टअप्स इस फील्ड में आ रहे हैं।
0: मैंने देखा है अब लोग डायरेक्ट फार्म से मसाले पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं मतलब।
1: हाँ, क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हो चुके हैं।
0: महामारी के बाद गार्गी हल्दी और काली मिर्च पूरा ग्लोबल सुपर फूड बन गई है।
1: वेस्ट में तो लोग टर्मरिक लाटे को कहकर हल्दी वाला दूध पी रहे हैं।
0: जो चीज़ दादी नानी नुस्खे में देती थी वह अब इंटरनेशनल ट्रेंड ट्रेंड बन गया है।
1: बिल्कुल, और इससे हमारे किसानों को भी बहुत फायदा हो रहा है।
0: पर क्या किसानों को मॉडर्न फार्मिंग की जानकारी मिल रही है इससे?
1: हाँ, सरकार उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेन कर रही है।
0: ऑर्गेनिक मसाले की तो विदेश में बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है ना,
1: बहुत ज़्यादा। यह प्रीमियम मार्केट भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
0: तो इसका मतलब कंक्लूजन तो यही है कि स्पाइस बॉक्स जो अपना भारत है देश की जीडीपी बढ़ा रहा है।
1: बिल्कुल सही, यह उभरता भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण सुगंधित तस्वीर है।
0: उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो चर्चा की है हमने मसाले पर काफी पसंद आई होगी।
1: अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।
0: तब तक के लिए देश का स्वाद लीजिए और देश के साथ आगे बढ़िए।
2: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: दोस्तों, आज का जो ये सेगमेंट है थोड़ा मसालेदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उभरते भारत और मसाले उद्योग की।
1: दोस्तों, और इस रसोई की शान की हम आज बात करने जाने वाले हैं, और देश की आन बान शान मसाला उद्योग की। और गार्गी, आप बताएंगे कि भारत कहाँ स्टैंड करता है इसमें?
0: हर्षित, आपको बता दें कि भारत दुनिया का स्पाइस बाउल भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल, दुनिया का लगभग 70% मसाला अकेले हम प्रोड्यूस करते हैं।
0: यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है हर्षित, यह हमारा विश्व स्तर पर दबदबा है।
1: पर पहले तो हम

0: तो दोस्तों, अब आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, यानी मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पर। ब्रह्मांड के रहस्यों की इस रोमांचक यात्रा में आज हम आपको ऐसे एक दहलीज पर खड़े हैं जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने आधी सदी से पूरी दुनिया के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसी आवाज जो शायद किसी ने हमें पुकारने के लिए भेजी थी।
0: बिल्कुल गार्गी, एक ऐसी रहस्यमय गूंज जो किसी इंसान या मशीन नहीं बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों से अचानक उभरी है। इसे दुनिया आज भी वाओ सिग्नल के नाम से जानती है।
1: इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1977 को, जगत ही अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। वहाँ एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप था जिसे प्यार से बिग ईयर यानी बड़ा कान कहा जाता था। इसका काम था रात दिन अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों पर पैनी नज़र रखना।
0: उस समय वैज्ञानिक SETI यानी सेटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी परग्रही जीव।

0: जीवन की खोज। तभी अचानक रात के सन्नाटे में टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने खगोल विज्ञान का इतिहास ही बदल दिया।
1: वो एक बहुत ही शक्तिशाली और नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक लगातार रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दें श्रोताओं कि 72 सेकंड कोई छोटा समय नहीं होता, खासकर जब आप ब्रह्मांड के अंतहीन शोर के बीच एक सुसंगत आवाज़ ढूंढ रहे हों।
0: जब कुछ दिनों बाद कंप्यूटर से निकले डेटा के प्रिंटआउट के खगोल शास्त्री जैसी एहमान जेरी आर ने पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। डेटा में अक्षरों और नंबरों का एक अजीब क्रम था, 6EQUJ5। इस तीव्रता को देखकर जेरी इतने रोमांचित हुए कि उन्होंने प्रिंटआउट पर लाल पेन से गोला बनाना बनाया और बगल में लिख दिया, वाओ।
1: यहीं से इस सिग्नल को अपना नाम मिला। लेकिन हर्षित, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये 6EQUJ5 कोई सीक्रेट कोड नहीं, बल्कि सिग्नल की बढ़ती और घटती ताकत को दिखाने का एक गणितीय तरीका था।
0: सही कहा गार्गी। और जो बात वैज्ञानिकों को खोज आज भी परेशान करती है वो थी इसकी फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल ठीक 1420 मेगाहर्ट्ज़ के पास मिला था। विज्ञान की भाषा में इसे हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है।
1: यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो इस यूनिवर्सल भाषा यानी हाइड्रोजन फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये अंतरिक्ष के बैकग्राउंड शोर में साफ सुनाई देती है।
0: ये सिग्नल धनु राशि यानी सेगेटेरस कॉन्स्टिलेशन की दिशा से आया था, लेकिन रहस्य यहाँ गहरा जाता है जब बाद के सालों में उसी सटीक जगह पर हजारों बार टेलीस्कोप घुमाए गए तो वहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं मिला। वो सिग्नल एक पल के लिए आया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
1: इसीलिए इसे लेकर कई थ्योरीज बनी। कुछ सालों पहले एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये शायद दो धूमकेतु के पीछे से आने वाली गैस की वजह से होगा, लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि धूमकेतुओं से इतना सटीक और स्थिर सिग्नल संभव नहीं है।
0: क्या ये धरती के किसी गुप्त सैटेलाइट का रिफ्लेक्शन था या फिर वाकई किसी एलियन सभ्यता का हेलो? 47 साल बीत जाने के बाद भी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं।
1: जी हाँ हर्षित, सोचिए अगर उस 72 सेकंड के संदेश में कोई अपनी गहरी जानकारी छिपी हो। शायद वो हमें बता रहे थे हम यहाँ हैं, या फिर वो ब्रह्मांड के किसी कोने से भेजी हुई कोई चेतावनी हो।
0: मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सगन ने एक बार कहा था, अगर हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं तो ये जगह की बहुत बड़ी बर्बादी है। शायद वाओ सिग्नल ने हमें बस ये एहसास दिलाया कि हम उतने अकेले नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं।
1: यह सिग्नल आज भी एक पहेली है, एक ऐसी खिड़की जो बस एक पल के लिए खुली और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। शायद भविष्य में फिर से कोई वाव सिग्नल हमें मिलेगा जिसका जवाब हमारे पास हो।
0: उम्मीद है आपको अंतरिक्ष की ये अनसुलझी और जो कहानी है वो काफ़ी पसंद आई होगी।
1: तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे दुनिया के किसी अनसुलझे रहस्य के साथ।

0: कल्पना कीजिए ऊंची ऊंची सुर्ख लाल चट्टाने जिनके बीच एक गहरी शांत झील अंगड़ाइयां ले रही है और इन चट्टानों के भीतर छिपी है सदियों पुरानी कलाकारी।
1: वाकई हर्षित, इस नज़ारे की कल्पना ही मन को रोमांचित कर देती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस जादुई और ऐतिहासिक नगरी की जिसे दुनिया बादामी नगरी के नाम से जानती है।
0: बिल्कुल गार्गी, ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 6वीं शताब्दी के चालुक्य राजाओं का वो अमर सपना है जो आज भी इन पत्थरों में साफ झलकता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सफर उन गुफाओं की ओर है जिन्हें प्राचीन समय में वातापी के नाम से पुकारा जाता था।
0: पर गार्गी, यहाँ पहुँचने का रोमांच भी तो कुछ कम नहीं है ना? अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ जाने का सही तरीका क्या है।
1: बिल्कुल हर्षित, यहाँ पहुँचना काफी आसान है। अगर आप रेल मार्ग चुनते हैं तो बादामी का अपना खुद का रेलवे स्टेशन है जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूर है। यह हुबली, गदग और सोलापुर जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
0: और जो लोग हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो हुबली एयरपोर्ट है। यहाँ से बादामी की दूरी लगभग 100 से 110 किलोमीटर है जिसे आप टैक्सी या फिर बस से तय कर सकते हैं।
1: और हाँ, रोड ट्रिप के शौकीन के लिए बेंगलुरु से 450 किलोमीटर का रास्ता बेहतरीन है। आप निजी वाहन या कर्नाटक राज्य परिवहन की बसों का विकल्प चुन सकते हैं।
0: बादामी पहुंचते ही अब बात करते हैं कि पहली चीज़ आपको क्या देखने मिलेगी। पहली चीज़ ही आपको हैरान कर देगी, वो है यहाँ की 4 विशाल गुफाएं जिन्हें पहाड़ों को काट कर बनाया गया है।
1: दोस्तों, पहली गुफा भगवान शिव की है। यहाँ नटराज की 18 भुजाओं वाली विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा खड़ी है।
0: क्या आप जानते हैं कि उन 18 हाथों से भरतनाट्यम की 81 अलग अलग मुद्राएं बनती है? ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल उदाहरण है।
1: सच में, और थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर दूसरी और तीसरी गुफा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की गौरव गाथा पत्थरों पर उखेरी गई है।
0: तीसरी गुफा तो यहाँ की क्राउन ज्वेल है। 578 ईस्वी में निर्माणित यह गुफा अपनी भव्य नक्काशी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
1: और चौथी गुफा जैन धर्म के प्रति श्रद्धा का अटूट प्रतीक है।
0: गुफाओं से बाहर झांकते ही अगस्त्य तीर्थ झील का जो वो विहंगम दृश्य दिखता है वो किसी सुंदर पेंटिंग जैसा प्रतीत होता है।
1: जी हाँ दोस्तों, और उस झील के उस पार स्थित है भूतनाथ मंदिर, डूबते सूरज की किरणों में बिल्कुल सोने की तरह जगमगा उठता है।
0: वैसे गार्गी, बादामी केवल इतिहास प्रेमियों के लिए नहीं है बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी बहुत खास है।
1: जी हाँ, इसे रॉक क्लाइंबिंग का मक्का भी कहा जाता है। दुनिया भर के पर्वतारोही यहाँ की खड़ी चट्टानों को फतह करने के लिए आते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, अपनी कैप और चश्मे ज़रा संभाल कर रखिएगा क्योंकि यहाँ के बंदर काफ़ी ज़्यादा मिलनसार और शरारती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, यहाँ का आर्कियोलॉजिक म्यूजियम भी आपकी यात्रा की लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए।
0: तो दोस्तों, कब बना रहे हैं आप बादामी का इस ऐतिहासिक सफ़र का प्लान?
1: अपनी ट्रेवल डायरीज में इस जगह की एक टिकट बुक कर लीजिए।
0: तो दोस्तों, अभी हमने बात की बादामी केव्स के बारे में, अगली बार फिर आपको ले चलेंगे ऐसी ही और ट्रैवल डायरीज के साथ एक सफ़र पर।

0: दोस्तों, आज का ये सेगमेंट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गायिका की जिनकी आवाज़ सुनकर मन खुद ब खुद शांति से भर जाता है।
1: बिल्कुल गार्गी, आज की हमारी संगीत यात्रा समर्पित है महान कर्नाटक शास्त्रीय गायिका अरुणा साईराम को।
0: दोस्तों, अरुणा साईराम सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो संगीत की वो कहानी है जिसमें भक्ति भी है, भावना भी और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती भी।
1: और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, यानी दिल मुंबई का है लेकिन सुर जो है पूरे दक्षिण भारत के हैं।
0: वाह, क्या बात कही है हर्षित। वैसे दोस्तों, अरुणा जी ने संगीत की शिक्षा अपनी माँ से शुरू की थी। कहते हैं ना, घर से निकला सुर पूरी दुनिया तक पहुँचता है।
1: बिल्कुल, बचपन से ही उन्होंने संगीत से इतना लगाव था कि जहाँ दूसरे बच्चे कार्टून देखते थे वहाँ अरुणा जी रियाज करती थी।
0: बिल्कुल, मतलब अगर उस समय रियाज चैंपियनशिप होती तो ट्रॉफी पक्का उन्हीं की थी।
1: दोस्तों, अरुणा साईराम की खासियत सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है बल्कि वो जिस तरह हर गीत को महसूस करके गाती है वही उन्हें सबसे अलग बनाता है।
0: सही कहा, जब वो भजन गाती है तो लगता है जैसे मंदिर का दरवाज़ा ही खुल गया हो, और जब कर्नाटक संगीत गाती है तो हर सुर दिल में उतर जाता है।
1: उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है, जैसे फ्रांस, अमेरिका, लंदन, हर जगह लोगों ने उनकी आवाज़ को खूब सराहा है।
0: और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई विदेशी लोग जिन्हें भारतीय भाषाएं भी नहीं आती है वो भी उनकी गायकी सुनकर भावुक हो जाते हैं। यही तो असली मतलब है संगीत का, जो भाषा से नहीं दिल से जुड़ता है।
1: अरुणा साईराम को संगीत के क्षेत्र में कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें पद्मश्री भारत सरकार द्वारा 2009 में उससे सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था।
0: लेकिन हर्षित, मुझे ऐसा लगता है उनका सबसे बड़ा अवार्ड है लोगों के दिलों में जगह बनाना।
1: बिल्कुल, और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वैसे गार्गी, अगर तुम्हें अरुणा जी की आवाज़ को एक शब्द में बताना हो तो क्या कहोगी?
0: मैं तो कहूँगी सुकून, और तुम क्या कहोगे?
1: मैं कहूँगा भक्ति, क्योंकि उनकी आवाज़ सीधे आत्मा को छूती थी।
0: बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने अभी तक अरुणा साईराम को नहीं सुना है तो आज ही सुनिए, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो यादें बन जाती हैं।
1: और इसी खूबसूरत बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ये थी बात अरुणा साईराम की।

0: दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलने वाले हॉलीवुड की एक सुनहरी दुनिया में, जहां एक अभिनेत्री ने अपने आत्मविश्वास, अभिनय और अभिनय से अलग अंदाज से इतिहास रच दिया।
1: जी हाँ, आज का हमारा खास कार्यक्रम ये समर्पित है महान हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न को।
0: दोस्तों, कैथरीन हेपबर्न सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो हॉलीवुड की वो शख्सियत थी जिन्होंने अपने नियम खुद बनाए थे।
1: बिल्कुल गार्गी, उस दौर में जब अभिनेत्रियों से एक तय तरीके से रहने और दिखने की उम्मीद की जाती थी, तब कैथरीन हेपबर्न ने अपने बेबाक अंदाज से सबको चौंका दिया।
0: और जानते हो हर्षित, उन्हें आरामदायक पैंट पहनना बहुत पसंद था, पर उस समय महिलाओं का पैंट पहनना आम बात नहीं थी। लेकिन कैथरीन ने कहा, मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं सहज महसूस करूं।
1: वाह, यानी वो सिर्फ फिल्मों की स्टार नहीं बल्कि आत्मविश्वास की मिसाल भी थी। दोस्तों, कैथरीन हेपबर्न का जन्म अमेरिका में हुआ था और बचपन से ही उनमें अलग सोच थी। उन्हें खेल, पढ़ाई और अभिनय तीनों से काफ़ी प्यार था।
0: और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उनकी आवाज़, उनकी आंखों की अभिव्यक्ति और उनका दमदार व्यक्तित्व लोगों के दिलों में बस गया।
1: उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया और हर किरदार में जान डाल दी। कॉमेडी हो, रोमांस हो या गंभीर रोल हो, कैथरीन हर अंदाज में कमाल लगती थी।
0: और दोस्तों, सबसे खास बात, उन्होंने 4 बार ऑस्कर अवार्ड जीता, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: 4 ऑस्कर, मतलब अगर अभिनव की कोई यूनिवर्सिटी होती तो कैथरीन हेपबर्न उसकी प्रिंसिपल होती।
0: बिल्कुल, उनकी एक और खूबी थी, वो हमेशा अपनी बात खुलकर कहती थी, उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
1: सही कहा, आज भी दुनिया उन्हें एक ऐसी कलाकार के रूप में याद करती है जिसने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नई सोच दी।
0: जी हाँ, कैथरीन हेपबर्न की कहानी हमें सिखाती है कि असली पहचान वही होती है जब इंसान खुद जैसा है वैसा ही दुनिया के सामने आए। और शायद यही वजह थी कि आज भी उनका नाम हॉलीवुड की सबसे महान अभिनेत्रियों में लिया जाता है।

0: दोस्तों तैयार हो जाइए एक शानदार फिल्मी सफर के लिए, क्योंकि आज का एपिसोड खास होने वाला है।
1: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिसने अपनी दमदार एक्टिंग से पूरी दुनिया में पहचान बनाई है, रामी मलिक।
0: जी हाँ दोस्तों, रामी मलिक को लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं उनकी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के लिए फिल्म बोहेमिया रेडोप्सी में, जहाँ उन्होंने फ्रेडी मर्क्यूरी का किरदार निभाया था।
1: और क्या कमाल की एक्टिंग की थी, ऐसा लगा जैसे फ्रेडी मर्क्यूरी फिर से जिंदा हो गए हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था।
0: इसके अलावा उन्होंने मिस्टर रोबोट में भी एलिवेट एल्डरसन का किरदार निभाकर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी।
1: अगर रामी मलिक हमारे स्टूडियो में होते तो मैं उनसे पूछता, आप इतने इंटेंस किरदार कैसे निभाते हैं?
0: और मैं पूछती कि आप असल जिंदगी में भी इतने सीरियस रहते हो या घर पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो?
1: जवाब आता है, इट डिपेंड्स ऑन द वाईफाई। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि म्यूज़िक और इनमें समय में कैसे उन्होंने जोड़ा था। और म्यूज़िक की ओर यह गाना समर्पित किया था उन्होंने सभी स्टार परफॉर्मेंस की, जो उससे काफ़ी इंस्पायर रहते थे।
0: जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात है और सच भी है। उनकी एक्टिंग सटल थी लेकिन पावरफुल भी।
1: दोस्तों, एकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं उनके ऑस्कर में, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 2019 में, फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी भूमिका थी उनकी फ्रेडी मर्क्यूरी की।
0: और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा से 2019 में, और फिल्म थी बोहेमिया रेडोप्सी।
1: इस अवार्ड ने उनके ऑस्कर जीतने के पहले ही उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा था। यह उनका सबसे बड़ा और फेमस अवार्ड है जिससे उन्हें पूरी दुनिया में सुपरस्टार की पहचान मिली।
0: तो दोस्तों, उम्मीद है आपको रामी मलिक का यह फिल्मी सफ़र पसंद आया होगा।

0: दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आप सुन रहे हैं दिलों को छू लेने वाली आवाज़ आकाशवाणी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज़ की जिसने 90 सालों से भारत के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज का दिन सिर्फ एक प्रसारण नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा को याद करने का दिन है।
1: जी हाँ, सिर्फ एक रेडियो नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक पहचान है। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी है 90 साल। जी हाँ, 9 दशकों से एक आवाज़ जो भारत को जोड़ती आई है।
0: दोस्तों, आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी 1936 में। उस समय न टीवी था, न इंटरनेट, सिर्फ एक भरोसेमंद साथी था, रेडियो। तब इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा जाता था। बाद में इसका नाम पड़ा आकाशवाणी।
1: और सोचिए, जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे, तब यही आवाज़ लोगों तक खबरें, संगीत, नाटक और ज्ञान पहुंचाती थी। और उस समय आकाशवाणी में लोगों को जोड़ा, गांव-गांव तक खबरें पहुंचाई, आज़ादी की आवाज़ बनकर लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई।
0: युद्ध के समय हो या आज़ादी की लड़ाई, आकाशवाणी ने हर दौर में लोगों को जोड़ रखा है।
1: अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसने आकाशवाणी को और भी मजबूत बनाया, हमारी महिलाएं।
0: जी हाँ, शुरुआती समय में जब महिलाओं का मीडिया में आना आसान नहीं था, तब भी कुछ साहसी महिलाओं ने माइक्रोफोन्स उठाए। आकाशवाणी में कई महिलाएं, उद्घोषिकाएं, पत्रकारों और कलाकारों ने अपनी आवाज़ से इतिहास रचा।
1: जैसे शुरुआती दौर में महिला उद्घोषिकाओं ने समाज में एक नई सोच दी कि महिलाएं सिर्फ घर तक नहीं सीमित नहीं हैं, बल्कि मीडिया पर और आवाज़ों में भी दुनिया तक पहुंचेंगी।
0: आज भी आकाशवाणी में महिलाएं न्यूज़ रीडिंग, डॉक्यूमेंट्री और प्रोग्राम होस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं।
1: दोस्तों, आकाशवाणी हमें सिखाता है कि आवाज़ में ताकत होती है।
0: और महिलाओं की भागीदारी हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंच छोटा नहीं होता।
1: 90 साल का यह सफ़र सिर्फ एक संस्था का नहीं है, बल्कि भारत की सोच, प्रगति और समानता का प्रतीक है।
0: हर लड़की, हर महिला के लिए यह संदेश है, अपनी आवाज़ को पहचानो, उसे दुनिया तक पहुंचाओ।
1: दोस्तों, आकाशवाणी हमें सिखाती है कि आवाज़ में बदलाव की ताकत होती है।
0: और महिलाएं हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मंच बड़ा नहीं होता।
1: और दोस्तों, सुनते रहिए कि

0: सीखते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: क्योंकि यह है आकाशवाणी, जहां हर आवाज मायने रखती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1459 में राव जोधा ने राजस्थान में जोधपुर शहर की स्थापना आज ही के दिन की थी।
0: 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे।
1: 1915 में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापान भागकर भारत छोड़ा था।
0: 2003 सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अलग कायदा के हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।
1: 2008 में चीन के सिचुआन प्रांत में भीषण भूकंप से 69,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
0: 2011 नाइजीरिया छात्र की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन यानी 12 मई 1820 के सम्मान में हर साल मनाया जाता है।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस दिलचस्प हो गई है। सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब्स को 3 विकेट से हराकर अपनी उम्मीदें जिंदा रखी है। टीम 10 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर पंजाब 4थे स्थान पर बरकरार है, लेकिन उसे टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए बचे हुए 3 मैचों में से कम 2 मैच जीतने होंगे। फिलहाल बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और पंजाब टॉप 4 में हैं, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1458 अंक गिरकर 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 करीब 438 अंक टूटकर 23,379 पर बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट रही। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट में कमज़ोर संकेतों का असर बाज़ार पर दिखाई दिया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों में भी बाज़ार में दबाव रहा। भारतीय रुपया आज कमज़ोर होकर 1 अमेरिकी डॉलर के सामने 95.20 पैसे के आसपास रहा।
1: तो दोस्तों, अब वक्त ने भी हमें जाने की ओर इशारा कर दिया है। अब से फिर मिलने का वादा करते हैं। मैं हूँ आपके साथ गार्गी पालीवाल और मेरे साथ हैं
0: हर्षित।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जाएंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी

0: आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा

0: हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रूपये का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद यह जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आपके लिए चुना है फिल्म वारिस से।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत फिल्म जहर से।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत में ये अगला गीत, फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज किशोर कुमार की।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब से बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार। समाचारों में पहले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात सुनवाए जाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया जाएगा। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
1: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है। तमाम

0: कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
1: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा जो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोड मैप तैयार करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपये की

0: लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलुम्बर जिले के ओड़ा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी जिलों में भीषण लू का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीटवेव और वन नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीटवेव और वन नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
0: इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें, हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार।

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट

0: तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर एचपीवी टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा के डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचाकोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका विचे नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूलां माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावण बाबत कह्यो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह्यो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक वेवन रिशंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान रखता थका करी जियो है। एनटीए रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जांच सारू मामलो सीबीआई ने सौंपण रो फैसलो कीनो है। एनटीए परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान बेगोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी एर मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माए बदलाव नी फैला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी फैला। एनटीए रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कह्यो के पूरो पेपर लीक नी भ्यो पर कुछ सवाल लीक भ्या। वे कह्यो के परीक्षा री प्रक्रिया माए चूक री ठा करण सारू सीबीआई ने जांच दीरी जी है।
2: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है।

0: है वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्टेज पर है किसी भी क्रम में है उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
1: इन बीच एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न उजुली चावेला इनमें पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 383,000 उम्मीदवार शामिल फै सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इंसारू अर्जियां में जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी फेवन री सूरत में मोबाइल नंबर, ईमेल और पता री जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान में भणाई लिखाई रा मौजूदा हालात री सराहना करता थका एकीकृत शिक्षा रा हलका माए राज्य ने देश माए अव्वल बतायो है। आयोग का न्यू जारी रपट्र मुजब राज्य पहली बारहवीं कक्षा ताई रे समय के शिक्षा मुहैया करावन रा मामला माए देश भर माए अव्वल है। रपट्र मुजब देश री कुल एकीकृत स्कूलों माए राजस्थान री हिस्सेदारी करीब 35% है। देश में पहले 12वीं कक्षा ताई री तालीम देवन वाली हर तीजी स्कूल राज्य में चल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,889 स्कूलों में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी ताई री शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश की सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण रे बारे में नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहतारी पीठ कहो कि नवी शिक्षा नीति 2020 रा तहत मायड बोली या भाषा आधारित भणाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माए पढ़ाई जा रही है तो इनने स्कूला माए पढ़ावण ने स्वीकार करण माथे कोई सवाल ही नहीं होवणो चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुक्म देता थका कहो कि इनने शुरुआती लेवल माथे भणाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावन रे बारा माए विचार करो जावणो चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थाना रा जानकारा री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पतालां रो दौरो करेला। टीम आ अस्पतालां माए ऑपरेशन थिएटर माए लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारे माए जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माए चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटारा सरकारी अस्पताल माए लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइयां री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा ऐडा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुकम दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पतालां रो दौरो कैरर व्यवस्था माए जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त री सदारत माए खास समिति बनावन बाबती कहो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मध्य पूर्व माए चाल रही तनातनी बीच भारत देश माए रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिनारा लेवल नो बधार 54,000 टन करती नो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली माए सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 माए आ जानकारी दीनी। वह कहो कि कई देशों ने लारला कुछ महीना माए कीमता माए बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनो पड़ियो जदके भारत घरेलू मूल माए थरता राखण माए कामयाब रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचारों माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वे आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय माए अहलकारा सागे मीटिंग माए बोल रहा है। इस मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय माए विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपया। वह विश्वविद्यालय परिसर माए करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्च बनाई जा स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन कीनो। वठे अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने

0: સરદાર તરીકાઉન લાગુ કરણ બાબત કહ્યો. રાજ્ય સરકાર કાન્યું જનતારા ભલા સારું ચલાઈ જા રહી ન્યારી ન્યારી યોજનાવાની જાણકારી જનતા તાઈ પૂગાવણ સારું ગ્રામ રથ અભિયાન ચલાયો જા રહ્યો હૈ. ઇના તેત સલુમર જિલ્લારા ઓડા અર અદવા સમેત કઈ ગાવા માય કાર્યક્રમ રાખી જ્યા જઠે લોક કલાકાર યોજનાવારી જાણકારી ગીતા અર નુક્કડ નાટકા રે જરીએ આસાન ભાષામાં દીની. બાડમેર જિલ્લામાં આઈ ઈ અભિયાન સારું ખાસ ઉમાવ નજર આ રહ્યો હૈ. ઓર બ્યુરો માણા ખબર નવીસું.
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. लोक गीतों नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आमजन से रूबरू हो रही हैं. जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर.
0: जोधपुर रो 568वां स्थापना दिवस आज हरक हुमाव सागे मनाई चियो. मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में रखी जा खास जलसा माए न्यारा न्यारा हलका माए चोखो काम करने वाला 19 जना ने मारवाड़ रत्न नवाजी चिया. इनु पहले मेहरानगढ़ अर जसवंत थड़ा माए शहीदा ने फूल चढ़ार सिद्धा भाव सागर याद करी चिया. ई मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी. ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 में जोधपुर बसायो हो. अरब मौसम प्रदेश में पाकिस्तान री सरहदों लागुड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है. आज बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो. जैसलमेर और बालोतरा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो. इन अलावा बीकानेर और जोधपुर में लू बाज रही है. कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में पड़ रहा जोरदार तावड़ाओं जिंदगी माथे असर पड़ रो है. मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हलका में लू रो दौर आवता 3-4 दिन तक चाल तो रहवन रा आसार है.
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा. विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है.
0: इंबीचे राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए आज हुई बिरखाऊ गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली. भरतपुर माए दोपहर पाछे बरसात हुई. धौलपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला माए अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है. आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो. नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला माए ओ दिवस मनायो जावे है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा में 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा. प्रदेश में आई नर्स दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जा. झुंझुनूरा BDK अस्पताल में चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो. इस मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियों री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी.
3: आज जो हमारी नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं. और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने, सफल बने और इस अवसर पर नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत
0: शुभकामनाएं. पेपर लीक री शंका बीच नीट UG 2026 परीक्षा रद्द. मामला री जांच CBI ने सौंपी जी. सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया में चल रही

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: राम राम नेता भाई सर। राम राम।
2: राम राम नानू भाई। राम राम।
1: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने अपनो
2: राम राम सा। देखो सा नानू भाई, आज आप चौपाल में बैठा हाँ और चौपाल में जानकारी भी करावांगा, मौसम री जानकारी करावांगा, सरकार योजना करा चलाई में लिए वंडी जानकारी करावा। तो लारे लारे देखो आपने जो कृषि यंत्र काम आवे वी किस तरह हव रही सके, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी करावा और जानकारियाँ लारे मनोरंजन भी करावा। और देखो आज आप चौपाल में बैठे हैं, आज कई आप जानकारी करावा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो आप सब जाना कि किसान भाई खेतीबाड़ी करे, लेकिन खेतीबाड़ी ला ला रहे देखो वे पशुपालन भी करे। और यदि पशुपालन की बात आवे तो देखो दुग्ध उत्पादन करने किसान भाई जो है कई प्रकार अतिरिक्त आय कर सके, अने बारे में देखो आज आप जानकारी दासा।
2: देखो सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय रो सशक्त माध्यम जो है वो है दुग्ध उत्पादन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अटे देखो खेती और पशुपालन एक दूसरा रा पूरक भी है। ग्रामीण क्षेत्र में खेती अक्सर देखो मानसून और बाजारी अनिश्चितता पे निर्भर करे। ऐसा में दूध उत्पादन नी केवल किसान भाइयों ने आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे बल्कि नानू भाई देखो तो अतिरिक्त आय रो एक निरंतर स्रोत भी बने हैं सर।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, जटे खेती बाड़ी री बात कर रहे हो तो देखो साल में एक दो दान देखो फसल जो काटा वनु देखो अपने आय प्राप्त हुए, लेकिन जटे दुग्ध उत्पादन या डेयरी व्यवसाय री अगर आप बात करा तो ये निरंतर चालवा वालों जो आय रो एक स्रोत है। और अणमें देखो दूध री बिक्रियों किसान दैनिक साप्ताहिक या 15 दिन या मासिक आधार पर जो है अणमें देखो निरंतर आय प्राप्त करते रहे वे है।
2: और यह नियमित आय देखो परिवार रा जो दैनिक खर्चा है, टाबरा री शिक्षा है या बच्चा आकस्मिक चिकित्सा

0: अगर आप बात करो तो पशुओं में देखो चारों प्रबंधन है, या पचे फसल रहा अवशेष है, या जो पशु द्वारा चारा में जो उपयोग की हो जावे वनों भी चारा री लागत कम आवे सा।
1: एंड लरेज देखो फसलारा अवशेष जैसे कि भूसो कड़बी चोकर जो अन्यथा बेकार वे जावे वे मवेशिया रे चारा रे रूप में उपयोग कर सका। अने हूँ चारा री लागत कम वेगा और जैविक खेत खाद भी अने हूँ मने देखो मवेशिया रो जो गोबर और मूत्र है वन में उच्च गुणवत्ता वाली खाद आप तैयार कर सका। अने हूँ रासायनिक उर्वरक पे वेवा वालों जो खर्चो है वो भी बचेगा और मिट्टी री उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगा सा।
0: और जटे देखो आपा दूध उत्पादन री बात करें तो उनमें आपा जाना कि अधिक अगर दूध उत्पादन हुए तो किसान भाई देखो दूध घी है, पनीर है, दही है, छाछ है, मावा भी हो, खोवा भी हो, या बच्चे आइसक्रीम आदि जो उत्पाद है वनारो निर्माण करने अपने अड़े बड़े री डेयरी पे या पचे जो है बाजार में जैन नकद बेचने देखो लाभ कमाई सके सा।
1: के बारो मतलब यो जे भाई कच्चो दूध भेजवारी तुलना में अगर किसान भाई दूध रो प्रसंस्करण और वंडा बनाया तक का जो उत्पाद बेचेगा तो आय दुगुनी बेच सके। अंडेला रिस देखो उप उत्पाद रही बात करा तो अणिम भी देखो अतिरिक्त कमाई बेच सके जिससे कि भाई गोबर गैस बायोगैस गोबर रो उपयोग करने बायोगैस बनाई सका जणियों रसोई गैस रो खर्चो है वो बचेगा। अंडेला रिस वर्मी कंपोस्ट भी बनाई सका सा।
0: और अंडे लारे लारे जटे आप गोबर और अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हो गौमूत्र हो तो देखो गोबर हो देखो आप कंडा पाथी ने देखो वणाने वेचांगा तो भी आए वेगा। और जटे गौमूत्र री अगर आप बात करा तो अणु गौमूत्र अर्क है, गौमूत्र फिनाइल है, अणारो भी निर्माण करने आप आसपास रो जो बाजार है वन में वेचने अच्छी आमद कमाई सका।
1: लारिस देखो अच्छी नस्ल रा जी बछड़ा बछड़ी है वना ने तैयार करने वेचांगा तो भी लाभदायक निवेश है। सरकारी योजना और सहायता भी कई चले मिली है भाई भारत सरकार भी देखो राज्य सरकार है ये सब जो है श्वेत क्रांति ने बढ़ावा देवारे वास्ते कई योजना चले मिली है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड है अन्य माध्यमों मवेशिया रे रख रखाव रे वास्ते देखो कम ब्याज पर ऋण मिले ऐसा।
0: बिल्कुल सा जेठे आप पशुपालक रे अगर बात कर रहे हो तो वन में देखो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना जन में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की बात करा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन री बात करा, या बच्चे मंगला पशु बीमा योजना री बात करा, और आप जो क्यों पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो अना सब रे माध्यमों सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जावे वणी माध्यमों पशुधन विकास री बात करा, चिकित्सा री बात करा, या पशुपालन री बात करा तो वो आसानी किसान भाई कर सके और अपनी आजीविका बढ़ा सके।
1: गांव गांव में देखो दुग्ध सहकारी समितियां वेवाऊं किसान भाया ने बिचौलियाओं मुक्ति मिल जावे। ई समितियां नी केवल देखो दूध रो उचित मूल्य सुनिश्चित करे बल्कि नानू भाई देखो मवेशियारे वास्ते उचित चिकित्सा कृत्रिम गर्भाधान जैसी जो सुविधा है वी भी देवे सा।
0: तो अंडे बात तो किसान भाई बहना ने आपा कहांगा कि किसान भाई बहन जो है उच्च नस्ल रा जो पशु है वना ने देखो राखे और स्वच्छ दूध उत्पादन करने देखो अपने जो आय है वन में बढ़ोतरी करे और अपनों विकास सुनिश्चित करे।
1: और देखो जटे आय में बढ़ोतरी वेगा और किसान भाइयों रो विकास वेगा तो बनारो मन करेगा कि भाई गीत संगीत होना। और आपा देखो जानकारी तो देवा लेकिन कार्यक्रम में आया हाँ गीत संगीत ताड़ी चलना सुनावा बड़े सो राजस्थानी गीत
0: बिल्कुल सर।

0: तो देखो नीता भाई साहब, बहुत प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत होना है। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा, अब किसान भाई बहना ने दा मौसम संबंधी जानकारी और सामान्य कृषिगत जानकारी।
1: तो देखो मौसम विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे उदयपुर में देखो आवाला 5 दिना में मौसम मुख्य रूपों साफ और गर्म रहवारो अनुमान है। तापमान री बात करना तो न्यूनतम 29-31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान जो है 42-42 डिग्री सेल्सियस रहवारी संभावना है सा।
0: बिल्कुल सर, और जड़े देखो सामान्य कृषि का जानकारी रे अगर आपा बात करा तो तेज धूप और बढ़ता तापमान ने देखते लगा तो किसान भाई बहना ने आपा कहा कि खरीफ री तैयारी जो है देखो मानसून पूर्व खेत री तैयारी अपना शुरू कर देनी, और खरीफ री फसला में मक्का है, मूंगफली है, कपास है, अनारा बीजा रे और उर्वरक री देखो अपने किसान भाई बहना ने व्यवस्था कर लेनी है।
1: पाणेतरी बात करा तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर व्यवहार कारण जायत फसला में जिससे कि तरबूज खरबूजो ये सब जो साग भाजी है और फलदार पौधा है वड़ा में नियमित पाणतापण करनी है। और किसान भाई देखो सिंचाई रो सही टाइम सुबह जल्दी या पचे हांजरी टाइम पे रखनो है सा।
0: बिल्कुल सा, और जटे देखो अगर बागवानी री अगर आप बात करा तो देखो बेर री अगर आप बात करा तो वर्खा पानी रे टाइम नहीं आवानो, पहला देखो आना ही गर्मी री टाइम में आपने पेड़ जो है बनारी कटाई छटाई रो काम करनो है। और जटे आम और नींबू री अगर आप बात करा तो छोटा पौधा ने देखो लू और तेज धूप बचाव रे वाते उचित छाया और नमी बनाई रखने आपने जरूरत है।
1: और अंडे लारेज देखो साग भाजी की बात करा तो कद्दू वर्जी जी फसलें हैं जिस तरह की लौकी तरोई करेला आना में निराई गुड़ाई कर लेनी है और तैयार फलारी तुड़ाई करने बाजार में भेजना है। नई वामणी की बात करा तो अगर पाणत्री पर्याप्त सुविधा वे तो अरहर तिल और ग्रीष्मकालीन मूंग री वामणी अणी टेम पे कर सका सा।
0: देखो यह तो बात की थी आप मौसम री और फसलारी, और जटे देखो अपने किसान भाई पशुपालन भी करे तो गर्मी रानी टाइम पे देखो पशुपालन में आपने विशेष ध्यान रखना, और खास तौर देखो पानी री बात करा तो सुबह दने और हांजे जो है अपने डांडा चौबाते देखो साफ और स्वच्छ ठंडा पेयजल री व्यवस्था अगर वही जाए तो वह मनारे बात है लाभदायक वे है सा।
1: और वनान देखो तेज धूप बचावना है सुबह और हांजरे टाइम पे वनाने जो है बाने निकाला है दिन ने तेज धूप में छायादार जगह पे रखना है। और वनारे पशुशाला में हवा रे पूरा प्रबंध करना है कि भाई देखो दिन रे टाइम पे लूरी संभावना वे तो कड़े खिड़कियां है दरवाजा है तो वना पे टाटरी बोरीरा पर्दा लगाई देना है। और तेज अगर धूप है और मवेशी अगर बेचैन दिख रहे हो है कई ऐसा हैदान नजर आ रहा है कि भाई कटे रोग रहा हैदान है तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक को सलाह लेने वाला उपचार जरूर कराई देना ऐसा।
0: तो देखो या तो दीदी आपा जानकारी और कार्यक्रम में देखो आगे आपा और भी बातचीत करांगा, पर वणो पहला किसान भाई बहन सब बैठा है तो को तो मनोरंजन करा और हुणा एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सा।

0: तो देखो नीता भाई साहब, या तो होने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। देखो रोजाना आपा किसान भाई बहनावत कणी ने कणी योजना री जानकारी लावा। हाँ तो आज कणी योजना री जानकारी किसान भाई बहनावत लाया हो?
1: देखो सा, आज आपा किसान भाई बहना ने जानकारी करावा कही अटल भूजल योजना कही है, क्योंकि जानकारी करावारो मकसद भी आपनो यो है भाई कि भाई जो सरकार जानकारी कराई रही है, इधा योजना चलाई रही है, वंडी जानकारी दांगा तो वह ठेठ जो है जमीनी स्तर पे पहुंचे। और अटल भूजल योजना री बात करने तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जंडो खास उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी रे माध्यमों भूजल प्रबंधन में सुधार करनो। और यह योजना देखो विशेष रूपों वना क्षेत्र पे केंद्रित है, जटे की भूजल रो स्तर तेजी नीचे पड़ रहे हो ऐसा।
0: बिल्कुल सा अणि योजना में जेठा पर बात कर रहे हैं तो अणमें देखो विश्व बैंक और भारत सरकार जो है दोहरी भागीदारी सुनिश्चित हुए। और अणमें देखो जो है आप बात की थी कि भूजल स्तर जो है उनमें सुधार करना अणि योजना रो मुख्य उद्देश्य है।
1: और अंडी शुरुआत देखो 25 दिसंबर 2019 ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी री 95वीं जयंती ही वधी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू कीधो गयो। और अंडो बजट भी जो है राख्यो गयो भाई 50% तो है विश्व बैंक रो ऋण और 50% भारत सरकार में देगा। और 5 साल रे वास्ते यो शुरू कीधो, जन्ने बाद में बढ़ाई दीदो सा।
0: और जड़े देखो आपा बात कर रहे हैं भूजल स्तर में सुधार है, लारे लारे घिरता लगा जो जल स्तर है वनने रोकनो और जलभूत जो आधार संरचना है वनने पाछो पुनर्जीवित करनो है सा।
1: लारे देखो सामुदायिक भागीदारी रे बात करा तो ग्राम पंचायत है, स्थानीय समुदाय है, अणा ने देखो जल प्रबंधन रो हिस्सो बनानो भी अंडो एक खास उद्देश्य है सा।
0: और जड़े देखो वो अटल भूजल योजना री बात करे तो उनमें जो ग्राम पंचायत है देखो गाँव वाला जल जो है वन पे जल बजट तय करने कतरो पानी और कंडो कतरो उपयोग लियो जानो चाहे वो भी अणि योजना में शामिल किदो लोगो है।
1: यानी कि मांग प्रबंधन अनमे किदो तो कोई भाई कृषि में पानी री खपत कम करवारे वास्ते सूक्ष्म सिंचाई जैसा जी उपाय है, वना ने बढ़ाई ने पानी री बचत करनो भी अंडो खास उद्देश्य है।
0: और जटे देखो आप अणि योजना री अगर बात कर रहे हैं तो अणमे जो संस्थागत जल सुदृढ़ीकरण है या पचे जो आप कहा कि जल सुरक्षा रे बात है देखो चेक डैम है, तालाब है या पचे रिचार्ज शॉफ्ट है, गड्ढा है, अणारे माध्यमों भी देखो जल भरण क्षमता ने बढ़ायो जावे ताकि भूजल रो स्तर जो घट रो है वन्ने बढ़ायो जा सके।
1: और अणि योजना ने कणी स्तर काम कर रहा है तो अंडा दो भागा में यह योजना काम करे, जिस तरह की संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण करनो है, डेटा संग्रहण रे वास्ते देखो नेटवर्क बनानो है, जल सुरक्षा योजना तैयार करनो है और लोगों ने जल रे प्रति जागरूक करनो है ताकि भी जो है पानी ने बचावे। और अंडे लारे देखो वना राज्य ने वित्तीय प्रोत्साहन देनो भी है जो कि भूजल प्रबंधन में हाव प्रदर्शन कर रहा है ऐसा।
0: और अण में देखो जो सरकार है ग्राम पंचायत रे माध्यमों लेवल ट्रेनिंग और खेती बाड़ी में बदलाव करने किसान भाई ने जो है ड्रिप से जो सिंचाई पद्धति है वणु जोड़े है और लारे लारे खेती बाड़ी में कम पानी में अधिक आमद किस तरह ले सके वणी प्रकार की जानकारी भी प्रदान करावे है।
1: और अपनो क्षेत्र तो भाई राजस्थान क्षेत्र है, अण में देखो शुष्क राज्य है यो और या यो

0: योजना बहुत लाभकारी है। अंडे तहत देखो कई काम वे रहा है, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पे जल सुरक्षा योजना बनाई जा रही है। समुदाय मिलने तय करे कि भाई जत्रो पानी उपलब्ध है, वंडो उपयोग आप किस तरह कर सका, और पुराना कुंवारी मरम्मत है, फार्म पौंड रो निर्माण करना है, वर्षा जल संचयन है, ये सब किस तरह कर सका, मनारी पुनर्भरण जो संरचना है वी किस तरह बनाई सका, ये सब काम जो है अणमें वे वैसा।
1: लारे लारे जो फसल विविधीकरण है वन्य अपने ने जो आपा कम फैसला वाली जो
0: हाँ अपना वार वास्ते देखो किसान ने प्रोत्साहित करे कि भाई जो कम पानी जना फसला में लागे वी फसल जो है किसान अपनाएगा, तो वहाँ देखो फसल उत्पादन भी बेच सकेगा, अतिरिक्त आमदनी भी बेच सकेगा, और वहाँ देखो पानी री कमी रे कारण नुकसान नहीं उठानो पड़ेगा।
1: और जटे किसान री आय री अगर आप बात करा तो सिंचाई रे बातें देखो पानी सुनिश्चित वेगा और आय में स्थिरता आएगा, पेयजल री उपलब्धता में सुधार वेगा और पानी समिति रे बातें स्थानीय स्तर पर जो समितियां हैं वनारो गठन करना है जिनमें सरकार जो योजना है वह पारदर्शिता लावे है सा।
0: तो या तो है अटल भूजल योजना झंडे तहत देखो ये सब काम है, और आपन सबने भी आवचेत बनो भाई खेती बाड़ी रो काम करा, और आपनी खेती बाड़ी देखो पानी पे ही निर्भर करे, अगर आपा पानी री बूंद बूंद नी बचा मांगा तो आवा वाला टाइम में देखो अबार गर्मी रो टाइम चाल रो, रानी
1: बिल्कुल
0: टाइम पे भूजल स्तर कम वे तो जई रो है, तो कम पानी में किस तरह आपा बेहतर काम कर सका, अंडे प्रति जागरूक रहेंगा जदिज आपनी फसला भी हाउ वेगा, आपनो जनजीवन जो है वो भी जो है बढ़िया चल सकेगा सा।
1: और जटे देखो आमद और लाभ री बात करा तो को तो कार्यक्रम में एक प्यारो राजस्थानी लोकगीत होना सा
0: हाँ सा।

0: देखो सा अत्रो बेड़ो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत होना है। और देखो सब झुमवा पे मजबूर हुआ सा। और देखो आगे रही अगर आप बात करा तो किसान भाई देखो खेती बाड़ी करो और खेती बाड़ी में वना रहो अगर सच्चो साथी का तो आज रे यंत्रीकरण रे युग में है ट्रैक्टर। तो किसान भाई देखो ट्रैक्टर और रख रखाव कड़ी प्रकारों करे ताकि वना रे जीवन में खुशहाली आवे। अंडी जानकारी दासा
1: हाँ सा। और देखो नानू भाई, कृषि रे आधुनिकीकरण में ट्रैक्टर केवल एक मशीन नहीं रही, बल्कि देखो खेती री धुरी बन चुक्यो है। यो नहीं केवल टेम री बचत करे, बल्कि देखो कठिन परिश्रम ने भी कम करे है। अटे जैसे आपा देखो कृषि ट्रैक्टर री भूमिका री बात करा तो लंबा जीवन रे वास्ते अंडे रख रखाव रो करनो भी जरूरी है, जदीस जो है ट्रैक्टर आपनो साथ निभाएगा सा।
0: बिल्कुल सही बात कह रहा हो। ट्रैक्टर जो है देखो किसान भाई बहन री जान है। और जटे ट्रैक्टर ही अगर आप बात कर रहे तो जुताई और खेत री तैयारी लाइने यदि फसल काटवा री बात कहाँ और बाजार तक पहुँचा री बात कहाँ तो वन में ट्रैक्टर रो महत्वपूर्ण योगदान है। तो जटे जुताई और खेत री तैयारी री बात करा तो कल्टीवेटर है, प्लाऊ है और रोटावेटर री मदद हो ट्रैक्टर जो है कम समय में मिट्टी री गहराई तक जोत।

0: बुवाई कर सके है।
1: और बुवाई और रोपणी री बात करा तो सीड ड्रिल रे माध्यम देखो बीजारी सटीक दूरी और गहराई पे वावणी संभव वे सके जणियु पैदावार बेहतर वे वैसा।
0: और जटे देखो अपा ट्रैक्टर रख रखाव री जटे बात कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर रख रखाव में किसान भाई बहन जो है, जो ट्रैक्टर है वन में देखो अपने किसान भाई जो है, देखो लाखों रुपया री कमाई ने अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा तो सही तरीका रख रखाव नहीं की दो तो वो देखो कबाड़ बन जाएगा। अंडे बातें देखो प्रतिदिन सुबह स्टार्ट करवाऊँ पहला लेने डीप स्टिक निकालने इंजन रा ऑयल ने देखो चेक करना चाहे, और अगर कम या ज़्यादा हुए तो तुरंत देखो वरना टॉपअप करना चाहे सा।
1: और देखो अंडे लारे देखो कूलेंट और पानी भी रो भी ध्यान रखना पड़े। रेडिएटर में पानी या कूलेंट रो स्तर देखा ताकि कहीं इंजन ओवर हीट नहीं वे वे, और ओवर हीट नहीं वेगा तो देखो ट्रैक्टर री जो है कार्य क्षमता वह बढ़ेगा सा।
0: और जटे देखो टायर है प्रेशर रे अगर आपा बात करा तो टायर में हवा रो दबाव देखो सही रखना चाहे, क्योंकि आपा सब जाना कि कम हवाओं कई वेगा कि डीजल ज़्यादा खर्च वेगा, और ज़्यादा हवाओं देखो टायर है फटवारो डर रखे, तो टायर रो जो दबाव हवा रो जो दबाव है टायर में टेम टेम पे आपने चेक करते रहना चाहे ताकि वनों आपने लागत कम आवे सा।
1: लारिस देखो धूल भरिया जो वातावरण है वन में काम करवा रहे कारण एयर फिल्टर ने रोज साफ कर लेना चाहे। यो एयर क्लीनर रो काम अगर आपा कर लांगा तो ट्रैक्टर जो है आयु बढ़ जाएगा सा।
0: और जटे देखो आपने ग्रीसिंग रे अगर आप बात करो तो फ्रंट एक्सल है, क्लच पेडल है, ब्रेक पेडल है, अना पे रोजाना देखो प्रातः काल ग्रीस गन मारनी चाहे। और यदि आप ट्रैक्टर की बात करें तो उन्हें खुला में नहीं रखना चाहे, क्योंकि धूप और बारिश में देखो उन्डो रंग उड़ जावे, वायर वगैरह कट जावे, तो उन्हें हमेशा कार्य रे पश्चात ढाकने रखना चाहे।
1: और लारिस देखो बैटरी री जांच भी आपने करता रहना है। बैटरी रे टर्नल पे जमा जो कचरो है विने साफ करता रहना है ताकि डिस्टिल्ड वाटर रो स्तर जांच लांगा तो वो कतरो है कम तो नहीं है। अणियुं भी ट्रैक्टर जो है हाउ तरी कम चालेगा। बेल्ट री टेंशन भी नहीं रहेगा कि भाई पंखा री बेल्ट ढीली तो नहीं है। अन्य भी आप सुनिश्चित कर लेवा जाँच लेवा तो ट्रैक्टर हाउ तरी कम चालेगा सा।
0: और जटे देखो अब गर्मी रही अगर आपा बात करा तो उनमें आप क्योंकि रेडिएटर जो है देखो टेम टेम पर साफ करवाना चाहे, ओवर हीटिंग को देखो इंजन जो है वो सीज वही जाए, और जटे देखो कूलेंट रे अगर आपा बात करा तो केवल पानी ज नहीं डालना बल्कि दो यारो बराबर स्तर रखना, और छाया में जो आपा बात की थी वो करना, और टेम टेम पे देखो अपने इंजन ऑयल जो है वंडी भी जाँच करने रखनी चाहे।
1: और तेल और फिल्टर भी बदलता रहना चाहे हर 250 300 घंटा यानी कि कंपनी जो निर्देश देवे वने अनुसार काम रे बंद करिया गेड़े इंजन ऑयल डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर बदल देना चाहे। ब्रेक और क्लच भी आपने देख लेना चाहिए। ब्रेक रिपकल और कचरे प्ले और मैकेनिक उजड़िया जो एडजस्ट है वी हाउ तरीका हूँ एक नहीं वे तो मैकेनिक को आपने हाउ एडजस्ट करवा देना चाहे ताकि गियर शिफ्टिंग में आसानी वे सके
0: और
1: सा।
0: जटे आपने लागे तो डीजल टैंक भी देखो समय समय पे साफ करवाना चाहे, क्योंकि टैंक में पानी या कचरो जमा हो जाए। अंडे केड़े टायर रोटेशन भी आपने करा तो रहना चाहे टेम टेम पे आगे रहा पाछला टायर और पाछला टायर आगे ताकि घिसाई जो है वह बराबर चलते रहे।
1: लारे देखो थोड़ी घनी सावधानियां भी रखनी चाहिए भाई डीजल री शुद्धता वे हमेशा देखो साफ और छन्यो तो को डीजल रो उपयोग करना चाहे। डीजल टैंक ने रात ने भर देना चाहे ताकि नमी यानी पानी जमा नहीं वे। और क्लच पे देखो पग नहीं मेलना चाहे चलाती टाइम पे कच पे पग अगर रखांगा ऐसी आदत तो कही है क्लच प्लेट जो है जल्दी घिस जावे सा।
0: और देखो कहना चाहूँगा कि किसान भाई ज़्यादा लाभ रे बातें कभी कभी ओवरलोडिंग भी करे है, तो ओवरलोडिंग को देखो आपने हमेशा बचना चाहे, क्योंकि अणु क्यों कि क्लच गियर जो है भी जल्दी ख़राब हो जाए, और किसान भाई बहन ने अगर नुकसान वेगा तो कठे न कठे वो देखो नुकसान करवा में ज़्यादा लाभ देना पड़ेगा।
1: नानू भाई आप देखियो वे का नरी हरी दान ट्रैक्टर चलाती वक्त किसान भाई जो है ट्रैक्टर ने चालू करने लंबा टाइम तक खड़ो रख दे तो ट्रैक्टर चालू करया करे लंबा टाइम तक खड़ा नहीं रखनो है। अणियों कही है इंजन री लाइफ कम वे। लारेज देखो अपना ट्रैक्टर री सर्विस हमेशा अधिकृत डीलर और कुशल मैकेनिक के वणों करवाना चाहे ताकि जो स्पेयर पार्ट है वणारो उपयोग भी आप कर सका और ट्रैक्टर में जो रीसेल मूल्य है वो भी हाउ बणियों तो करे वैसा।
0: तो किसान भाई बहन देखो ट्रैक्टर रख रखाव में अगर पूर्ण सावधानी बरतेगा तो वणा ने फसला में अच्छा लाभ देगा। और देखो कार्यक्रम में लाभ री बात करा और होना एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।

0: तो नानू भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनाए और जो ते खेती बाड़ी री बात कर रहे हैं तो अबे जानकारी करा वहाँ भाई स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसल समृद्ध किसान अंडे वास्ते देखो मिट्टी में सूक्ष्म जीवारी सक्रियता किस तरह आपा बढ़ाई सका सा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। जड़े देखो आप मिट्टी रे बात कर रहे हो तो आपा जाना कि अपनी मिट्टी वटनी दान जीवित है जटा तक बात सक्रिय है। अगर उनमें पोषक तत्व मौजूद नहीं और आपा चाहो कि अपनी फसला जो हाउ तरह वृद्धि करे तो वो नहीं वे सके। अंडे बातें जो मिट्टी री उर्वरता देखो आपा जाना कि कम वे पोषक तत्व और चक्रण सही नहीं और मिट्टी री संरचना यदि सही नहीं हो तो अपनी फसल हो नहीं वे। अणवे मिट्टी में सूक्ष्म जीवारी सक्रियता आपा कणी प्रकार बढ़ावा वह जानकारी देवा सा।
0: और देखो मिट्टी में सक्रियता बढ़ावा रे वास्ते देखो मिट्टी ने पोषण देना बहुत जरूरी है। जन्मे की जैविक पदार्थ री बात करना तो कंपोस्ट है गोबर खाद है फसल अवशेष है ई सब सूक्ष्म जीवा ने भोजन और ऊर्जा दे वैसा। तो अगर आप मिट्टी ने पोषण दांगा जैविक पदार्थ द्वारा तो मिट्टी उर्वरा शक्ति बनी तकी रहेगा सा।
1: और जटे नमी री बात करा तो नमी में संतुलन बनाए राखो वाते अत्यधिक सिंचाई या पचे अधिक सूखोपन नहीं चाहे। वन में मिट्टी ने नम रहे अनेक प्रकार संतुलित सिंचाई व्यवस्था अपने करनी चाहे।
0: मिट्टी में देखो हवा रो संचार भी बेणो चावे क्योंकि संवाहक अगर वेगा हवा रो संचार अगर वेगा गीली मिट्टी या पचे जो भी कचरो है वणी आपने बचनो है ऑक्सीजन रे वास्ते देखो अगर वायु मिट्टी रे अंदर जाएगा जतिज वंडा छेद जो है वी काम करेगा और वन में संचार वेगा तो इज फसल जो है भी बढ़ सकेगा सा।
1: और देखो अपनी खेत री जो मिट्टी है वने देखो ढांकने रखनी चाहिए क्योंकि मल्च या पचे आवरण फसला यदि आप लगावा तो वणु कही वे कि वणी नमी सूक्ष्म जीवारी वृद्धि वे और सूखापन बचावे। तो मिट्टी में नमी आपने निरंतर वने ही रखनी चाहिए।
0: लारे आपने यो भी करना है भाई व्यवधान कम करना है एक वत्ती जुताई नहीं करनी है जुताई आपने सीमित रखनी है अणियों कई वेगा सूक्ष्म जीव रो जो प्राकृतिक आवास है वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो अगर आपा जरूरत नहीं है जुताई कर रहे हैं हाँ तो वणियों जो है बनारा आवास खत्म भई सके सा।
1: और जटे देखो रासायनिक उर्वरक रे प्रयोग बचनो चाहे और जैविक उर्वरक में कंपोस्ट चाहे है सूक्ष्म जीव संबंधी जो आपा कचरा रे बात कराएं या पचे का कि कंपोस्ट खाद है अंडो अगर उपयोग करेंगे तो ये सब जो अपने मिट्टी है वन में नमी ने बनाए रखेगा।
0: लारिस देखो अगर आपने मिट्टी री उर्वरा शक्ति बनी तकी रहेगा तो केंचुआरी वापसी वे सके मिट्टी उन ताजा सुगंध आनो चालू हो जाएगा और खट्टी गंध नहीं रहेगा पानी रो बेहतर रिसाव वेगा और जड़ा भी जो है बनारो मजबूत जो है विकास वे सकेगा सा।
1: और जटे देखो ये सब बात आपा की दी तो उनमें पोषक तत्व रहे तेज तरह विकास होगा। मिट्टी के संरचना में उर्वरकता बनी रहेगा बेहतर नमी रहेगा तो जल धारण क्षमता बढ़ेगा और फसला में अधिक जो उपज है वह आपा ले सकांगा।
0: उर्वरक भी देखो बेहतर मन में वही सकेगा और मिट्टी ने देखो पोषण दांगा पर्यावरण री सक्षा रक्षा वेगाणियों और सूक्ष्म जीव जो है भी स्वाभाविक रूप को पुनर्जीवित वे जाएगा सा।
1: तो देखो यह जानकारी दी थी आपा किसान भाई ने कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है वणा ने कणी प्रकार बढ़े ने आपा फसल री पैदावार बढ़े सका सा।
0: और अबे आपको तो देखो कार्यक्रम में भी जो है आगे बढ़ावा और जानकारी तो दे ही रहा हाँ लारे लारे गीत संगीत आड़ी चलना और सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सा।

0: तो नानू भाई देखो, आप जानकारी करे ला रहे, मनोरंजन भी किदो, लेकिन अबे घड़ी आड़ी देखा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी क्यों, तो चालना सा जय जवान
1: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण परिवारों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

के 9:15 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं चंद गजलें। लीजिए पेश है ये पहली गजल।

सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मों से कुछ गीत। पहला गीत आपके लिए चुना है अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज़ में फिल्म भेड़िया से।

नई फिल्मों से चंद गीतों के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं तक, और अब हम लिए चलते हैं आपको दूसरी तरह के कुछ फिल्मी गीतों की ओर। आप जुड़े हैं हमारे साथ यानी आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मन चाहे गीत।

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म रात और दिन से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

मन चाहे गीत। जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से फिल्म संगीत प्रोग्राम के दौरान मन चाहे गीत। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:17 हो चुके हैं। आइए सुनवाते हैं इस प्रोग्राम का ये अगला नगमा फिल्म तेजाब से। आवाज़ नितिन मुकेश, शबीर कुमार, अलका और साथियों की।

0: मन चाहे गीतों में अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म खामोशी से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।
1: ओ शाम

मन चाहे गीतों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इज्जत से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आज बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष

0: सीबीआईटी में विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far

Everybody, bye-bye.